आज शनिवार है, शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं से आरंभ होती है।

0: فرح ناس. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे. ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे. इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे. ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है. पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे. कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे. प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया. योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है. श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है.
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ.
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे. ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी. सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी. न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है. एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया. अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया. कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी. वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है. वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे. श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं. वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन

0: और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं समूह स्वर में सबसे पहले ये मातृ वंदना।

श्रोताओं, लता मंगेशकर सर में आपने ये भजन सुना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये भजन, जिसे स्वर दिया है जगजीत सिंह ने।

भक्ति पद के साथ ही भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:30 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, आधुनिक जीवन शैली। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विजय शर्मा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।

मानव जीवन बड़ा अमूल्य है। संपूर्ण पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने सोचने, समझने और हंसने का गुण दिया है। इसलिए उसकी जीवन शैली उसके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। जीवन शैली का अर्थ है जीवन जीने का तरीका या ढंग। व्यक्ति चाहे तो अपनी जीवन शैली से अपने जीवन को वरदान बना ले या चाहे तो उसे अभिशाप बना ले। आज जिस प्रकार भौतिक सुखों की ओर मानव अंधाधुंध दौड़ लगा रहा है, उससे वो साधन संपन्न तो बन रहा है, किंतु उसका स्वास्थ्य और हृदय कोश प्रभावित हो रहा है। भौतिकता हमें बिस्तर तो दे सकती है, लेकिन सुकून की नींद नहीं दे सकती। इस प्रकार की जीवन शैली हमारे मन एवं शरीर को सुदृढ़ करने की बजाय हमें मानसिक और शारीरिक रोगी बना सकती है। सही जीवन शैली हमारे मन को ऊर्जावान बनाती है और हमारे शरीर को शक्तिशाली। आज हम, विशेष रूप से हमारे युवा, पाश्चात्य संस्कृति का

शारीरिक श्रम, ध्यान, उपासना, संतुलित भोजन आदि को अपने जीवन से जैसे हमने अलग कर दिया है, रात दिन केवल भौतिक सुखों को संग्रह करने में लगे हुए हैं। कार्यों की अधिकता और पर्याप्त नींद के अभाव में याददाश्त प्रभावित हो रही है और तनाव दिनों दिन बढ़ रहा है। देर रात तक जागना और सुबह देर तक सोने के कारण मानसिक और शारीरिक विकार निरंतर बढ़ रहे हैं। नकारात्मक विचार हावी होते जा रहे हैं, जिससे आत्महत्या, व्यभिचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार जैसे भावों में वृद्धि होती जा रही है। ये ठीक है कि तकनीकी विकास में हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु मोबाइल, इंटरनेट जैसे साधनों से संबंधों में दूरियां बढ़ रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ बढ़ते जा रहे हैं। घर का प्रत्येक सदस्य अपनी निजी जिंदगी जीना चाहता है। हमारी जीवन शैली में तकनीक ने इतनी गहरी पैठ बना ली है कि अपनी संपूर्ण क्षमताओं का ज्ञान भी हम भूल गए हैं। सच्चाई तो यह है कि बाहरी दुनिया की चकाचौंध व सुख सुविधाओं को अर्जित करने में ही हम अपने जीवन का 80% प्राण लगा देते हैं और शेष 20% यों ही बर्बाद हो जाता है। यदि हमें मनुष्य जीवन को समझना है तो अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। जीवन शैली को हमें अपने लक्ष्य में बाधा नहीं बनाना है, वरन सहयोगी बनाना है। शरीर के साथ साथ मन का भी ध्यान रखना है। इसके लिए समय प्रबंधन सबसे बड़ी जरूरत है। तकनीक हमें सुख सुविधाएं देती है तो जीवन शैली हमें जीना सिखाती है, हमारी गलतियों, भूलों व आदतों से परिचित कराती है। और यदि शरीर और मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर इन सब सुखों और भोगों को हम भोगेंगे कैसे? इसलिए हमें अपनी जीवन शैली के बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, आधुनिक जीवन शैली। आलेख डॉक्टर विजय शर्मा का और वाचन किया था यतिंद्र चतुर्वेदी ने। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:35 होने को हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ।

श्री रामचरित मानस का समापन प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की विनय और रामायण के पारायण की फलस्तुति की गई है। भक्त कवि

पद की प्राप्ति होती है, जो रामायण की 5-7 मनोहारी चौपाइयों का अर्थ समझकर हृदय में धारण कर लेते हैं, उनका 5-5 प्रकार की अविद्या का अंधकार अर्थात अज्ञान श्री राम कृपा से मिट जाता है। जिनकी लेश मात्र कृपा से

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। वाचन स्वर सुरेश वाडकर, अनुराधा पोडवाल और साथियों का था। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि सामयिकी। श्रोताओं, कृषि सामयिकी में आज का विषय है जल संरक्षण की आधुनिक विधियां, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि सामयिकी।
1: वर्तमान की महती आवश्यकता है। हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध कुल 1384 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी में 97% पानी खारा है, जो कि समुद्रों में है एवं हमारे लिए अनुपयोगी है, एवं कुल 2.6% पानी पीने योग्य उपयोगी है। इसमें भूगर्भीय जल 0.58%, ध्रुवीय बर्फ के रूप में 2.01%, नदियों एवं झीलों में 0.016% शामिल है। भारत में पीने योग्य पानी का 77% भाग सिंचाई में, 4.6% भाग घरेलू उपयोग में, 12% उद्योगों में एवं 11.4% अन्य विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त हो रहा है। दिनों दिन बढ़ रही जनसंख्या एवं गिरते वनाच्छादित क्षेत्र से जल उपलब्धता का संकट हम सभी के सामने है। ऐसी स्थिति में हम सभी का दायित्व है कि जल का अपव्यय न करें एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूक हों। वर्षा जल का यदि हमने संरक्षण कर लिया तो एक ओर भूमि कटाव या मृदा अपरदन की समस्या का समाधान होगा, वहीं दूसरी ओर गिरते भू जल स्तर को सुधारने में हमें सफलता मिलेगी। ग्रामों में पानी रोकने और संग्रहण के लिए जो संरचनाएं बनाई जाती हैं उन्हें रिच टू वैली यानी ऊपर से नीचे के सिद्धांत पर कार्यान्वित करें। खेतों में भी जल संग्रहण किसान भाई कर सकते हैं। इसमें कुंडी का निर्माण, डबरी, डग आउट पॉन्ड का निर्माण और कुइया, खेत तालाब योजना, इनका लाभ लेते हुए किसान भाई इन संरचनाओं का निर्माण अपने खेतों में कर सकते हैं। और खेत में ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो कि खेत के ढलान वाले स्थान पर हो, वहां पर खेत तालाब, कुंडी, डबरी इत्यादि का निर्माण करना चाहिए। इससे फसल को भी जल उपलब्धता सुनिश्चित होती है और साथ ही भूमि जल का संवर्धन भी होता है, और जो हमारे ट्यूबवेल और कुएं जो सूख रहे हैं उनमें पानी का बहाव प्रारंभ होता है, पानी में अभिवृद्धि होती है। नदी नालों पर पानी रोकने वाली संरचनाओं का निर्माण भी किया जाता है, जिसमें नाला बंधान, बोरी बंधान, नाला वियर, मिट्टी बंधान, स्टॉप डैम, भूमिगत बंधान जैसे डाइक कहते हैं और चेक डैम, इनका निर्माण जो नदी नाले जो कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आते हैं, उस पानी को हम यूं ही बहने नहीं देते बल्कि उनको हम अवरुद्ध कर पानी को रोकने का प्रयास करते हैं, काफी सहायक संरचनाएं होती हैं। बोरी बंधान बहुत ही सस्ता आसानी से अपनाया जाने वाला संरचना है। इस संरचना में बोरियां होती हैं, प्लास्टिक की बोरी हो या जूट की बोरी हो, इसमें आप रेत इत्यादि को भरकर जहां पानी का बहाव है उसके अवरुद्ध एक दीवार की तरह नीचे से ऊपर की ओर आते हुए जमा दी जाती है। इससे पानी का बहाव अवरुद्ध होता है और नाले के ऊपरी भाग में पानी एकत्रित होने लग जाता है। इस पानी का उपयोग हम फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही इसके बनने से पानी जो भरा रहता है उसकी वजह से भूमि का जल संवर्धन होता है। कृत्रिम जल भरण हेतु संरचनाएं भी आजकल हमारे क्षेत्रों में अपनाई जाना चाहिए। उनमें एक तो गर्त या

श्रोताओं, आपकी कसम फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना, आनंद बख्शी के बोल और संगीत राहुल देव वर्मन का। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आप तो ऐसे न थे। आवाज मनहर की, निदा फाजिल की, और संगीत उषा खन्ना का। तो आइए सुनते हैं

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 102.2 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार।

नमस्कार, शिवपुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को महेंद्र राघव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुबह का समय और योग का महत्व विषय पर। मित्रों, सुबह का समय प्रकृति का सबसे शांत, पवित्र और ऊर्जा से भरपूर समय माना जाता है। सुबह वातावरण में शुद्धता, ताजगी और सकारात्मकता विशेष संचार होता है और उगते हुए सूर्य की किरणें न केवल प्रकृति को नई ऊर्जा देती हैं बल्कि हमारे शरीर और मन को स्फूर्ति प्रदान करती है। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्रातःकाल जागने और योग करने की परंपरा को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलित स्थापित करने की एक अद्भुत प्रक्रिया है। जब हम सुबह के समय योग करते हैं तो हमारा शरीर अधिक सक्रिय और मन अधिक एकाग्र रहता है। योगासन, प्राणायाम और ध्यान हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और दिन भर की कार्यों के लिए हमें तैयार करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में तनाव, चिंता और अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं आम बात हो गई है। ऐसे में नियमित योग करते रहना हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। योग से दोस्तों शरीर की लचीलापन में बढ़ोतरी होती है, रक्त संचार बेहतर होता है और पाचन तंत्र मजबूत बनता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है। वहीं प्राणायाम और ध्यान मानसिक तनाव को कम करके मन को शांत और स्थिर बनाते हैं। सुबह का योग हमें अनुशासन भी सिखाता है और जब हम प्रतिदिन एक निश्चित समय पर उठकर योग करते हैं तो जीवन में नियमितता आती है। इससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है और हम अपने दायित्वों को अधिक उत्साह और दक्षता के साथ निभा पाते हैं। दोस्तों, योग का महत्व केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं बल्कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में योगदान भी दे सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने योग की प्राचीन परंपरा को विश्व तक पहुंचाया है और 26 जून को विश्व योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया ने योग के महत्व को स्वीकार कर रही है। श्रोताओं, यदि हम प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट भी योग के लिए निकालें तो अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और दिन की शुरुआत योग के साथ करने से तन यानी शरीर हमारा स्वस्थ, मन प्रसन्न और जीवन संतुलित बनता है। तो आइए हम संकल्प लें कि सुबह के अमूल्य समय का सदुपयोग करेंगे और योग को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाएंगे। श्रोताओं नमस्कार, शिवपुरी कार्यक्रम में और भी हम आपसे चर्चा करेंगे विषयों पर, लेकिन आइए सुनते हैं एक महत्वपूर्ण

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

मित्रों, गर्मी का मौसम हर वर्ष अपने साथ अनेक चुनौतियों को लेकर आता है और हाल के वर्षों में तापमान में लगातार वृद्धि भी देखी जा रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं और लू का प्रकोप न केवल असुविधा पैदा करता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालता सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम इस मौसम में सावधानी बरतें और स्वयं को गर्मी के दुष्प्रभावों से सुरक्षित भी रखें। सबसे पहले दोस्तों, हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में शरीर से पसीने के रूप में पानी और आवश्यक लवण बाहर निकल जाते हैं, इसलिए प्यास लगने का इंतजार न करें बल्कि समय समय पर पानी पीते रहें। नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी और घर में बने शीतल पेय भी शरीर को तरोताजा रखने में मदद करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, धूप से बचाव करना। दोपहर के समय विशेषकर 11 से 4 के बीच धूप में निकलने से यथासंभव जहां तक हो सके बचें। यदि बाहर जाना आवश्यक हो तो सिर को टोपी, गमछे या छाते से ढकें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें, जिससे कि शरीर को ठंडक मिलती है और लू लगने का खतरा भी कम होता है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ताजे फल, हरी सब्जियां और पानी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी का सेवन करना चाहिए। बासी भोजन और अत्यधिक तेली और मसालेदार जो भोजन है उसे लेने से बचना चाहिए। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को तो विशेष सावधानी बरतनी होती है क्योंकि वे गर्मी से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। उन्हें पर्याप्त रूप से पानी मिलता रहे, आराम मिलता रहे, इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को तेज सिरदर्द, चक्कर आना, अत्यधिक कमजोरी, उल्टी या बेहोशी जैसी समस्या हो तो यह लू लगने का संकेत हो सकते हैं। ऐसे में उसे छायादार स्थान पर ले जाएं, पानी पिलाएं और आवश्यकता होने पर चिकित्सीय सहायता भी दें। तो हम स्वयं सतर्क रहें और अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इस उपायों के प्रति जागरूक करें।

शिवपुरी के कुछ समाचारों की। शासकीय आईटीआई में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पोहरी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न रोजगार परक ट्रेंडों वेल्डर, कोपा, स्टेनोग्राफर, हिंदी फिटर और इलेक्ट्रिशियन में ऑनलाइन प्रवेश एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षक 22 जून तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। राज्य शिक्षा केंद्र के तहत आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान का एक वर्षीय सेवा काल प्रशिक्षण पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश पाठ्यक्रम का नया सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। योग्यता रखने वाले शिक्षक 22 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को नई अंग्रेजी भाषा शिक्षण की पद्धतियां सिखाई जाएंगी। जाते जाते बात करते हैं आज के मौसम के बारे में। शिवपुरी में आज मौसम गर्म रहने की संभावना है। दिन के समय अधिकतम तापमान लगभग 37 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भी संभावना है। कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ में हल्की बारिश हो सकती है। हवा की गति मध्यम रहने की भी संभावना है और दोपहर के समय उमस और गर्मी का असर महसूस हो सकता है। घड़ी की सुई इशारा कर रही है आपसे विदा लेने के लिए, तो महेंद्र राघव को अनुमति दीजिए।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
5: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
4: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे।

0: और कलकत्ता में रोइड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दास गुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: We have been able to achieve that in the first.
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: They are all designed in India now.
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
5: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

लावारिस। इस फिल्म में अभी आपने अलका याग्निक को सुना, प्रकाश मेहरा के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। फरमाइशकर्ता छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा और साथी। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए सुनते हैं।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: श्रोताओं, साजन फिल्म में अभी आपने देखी अलका याग्निक और SV बाला सब

राम तेरी गंगा मिली, इस फिल्म में अभी आपने सुरेश वाडकर को सुना। रविंद्र जैन का संगीत और फरमाइशकर्ता भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए सुनते हैं

सड़क, इस फिल्म में अभी आपने कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल को सुना। समीर की रचना और संगीत नदीम श्रवण का था। फरमाइश करता थे लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे ललिता नारायण खर्चे गणेश कार्तिक खर्चे संजनापुरी खर्चे मालती स्वाति प्रयाग चौधरी और साथी। आइए सुनते हैं अंतिम।

सफ़र फिल्म में आपने किशोर कुमार को सुना इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। फरमाइश करता नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, रिश्का, रॉबिन और साथी। और इसी के साथ फिल्म संगीत आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक रंग लोक संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं अशोक कुशवाहा और साथी और ममता गोस्वामी गाए कुछ लोकगीत। तो आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोता, लोक संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे अशोक कुशवाहा और साथियों को। आइए अब सुनते हैं ममता गोस्वामी के गायन।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंग में अभी आप सुन रहे थे ममता गोस्वामी को। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 होने को हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अभी आपने उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल को सुना। गीत लिखा था समीर ने और संगीत आनंद मिलिंद का था। फरमाइश करता कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निखार, वंश बत्ता और साथी। आइए सुनते हैं

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म में भी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को। फैज अनवर का लिखा यह गीत और नदीम श्रवण का संगीत। फरमाइश करता अंबेडकर कॉलोनी खनियादाना से सगीर मोहम्मद कुरैशी, राजा मोहम्मद कुरैशी, असगर मोहम्मद कुरैशी, लिकायत खान, निजायत खान और फिजा खान। तो आइए सुनते हैं

दिल जले। इस फिल्म में आपने कुमार सानू, अलका याग्निक को सुना, जावेद अख्तर के बोल और संगीत अनु मलिक का। फरमाइश करता छत्तीसगढ़ भाटपारा दत्तरिंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा और साथी। फिल्म संगीत आपकी फरमाइश में, आइए सुनते हैं।

दोस्ताना फिल्म में भी आपने आशा भोसले और किशोर कुमार को सुना आनंद बख्शी की रचना और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फरमाइश करता रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिक, संजना परी, ललिता नायक खर्चे और साथी। अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: आलेख है फिरोज खान का, वाचन स्वर नवनीत चौबे की।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी, आलेख फिरोज खान, वाचन स्वर नवनीत चौबे।

सिवनी जिले में मानसून के आगमन का इंतजार करते हुए किसान खरीफ फसलों की तैयारी में लग गए हैं। पिछली रबी फसल में अच्छी पैदावार मिलने से किसानों में उत्साह है। पिछले वर्ष जिले में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी हुई थी। इस बार खेती का रकबा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए जिले में कृषि रथ रवाना किया गया है। यह रथ सभी विकास खंडों की ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेगा। कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी किसानों को उन्नत खेती, जैविक कृषि और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही फसल विविधीकरण और मृदा स्वास्थ्य पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। गंगा दशहरा के अवसर पर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन लखनवाड़ा के वैन गंगा घाट पर हुआ। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आरोह 2026 का समापन उत्साह के साथ हुआ। जिले भर के 2500 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, किसानों और नागरिकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और युवाओं की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा किए। फिट इंडिया अभियान के तहत विश्व साइकिल दिवस पर सिवनी में संडे ऑन साइकिल रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। प्रतिभागियों ने नियमित साइकिल चलाने का संकल्प लिया। खेल जगत से एक अच्छी खबर आई है। एशिया कप में भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने वाली सिवनी की खिलाड़ी नौसीन नाज का सम्मान किया गया। उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 12 गोल किए थे। कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित करते हुए 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जागरूकता बढ़ रही है। दल सागर तालाब में आयोजित श्रमदान अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने मिलकर सफाई की। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण और हरित सिवनी बनाने का संकल्प लिया गया। इस बीच प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर जन परामर्श प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिवनी के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित बैठक में नागरिकों से सुझाव लिए गए। जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से जिले के लोगों की समस्याओं का निराकरण भी लगातार किया जा रहा है। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक करीब 800 आवेदनों पर सुनवाई की गई है। भूमि विवाद, आवास, पेयजल और आर्थिक सहायता जैसे मामलों पर आवेदन प्रस्तुत हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक 12 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की जान गई, वहीं 22 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा डूबने और आग की घटनाओं में भी 2 लोगों की मृत्यु हुई। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सिवनी लगातार आगे बढ़ रहा है। साहित्य प्रेमियों को जोड़ने के लिए जिले में नियमित रूप से काव्य गोष्ठियां और विचार मंचों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में एक कवि सम्मेलन और मुशायरा आयोजित किया गया। खेलों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच जिले में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन भी जारी है। धनोरा ग्राम में आयोजित DPL क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा। मंडला की टीम ने लखनादौन को 3 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल सिवनी के फुटबॉल स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिवनी विकास खंड के केकड़वानी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता कौशल्या सरोआम और सहायिका लीलाबाई यादव ने अपनी मेहनत और समर्पण से पोषण वाटिका विकसित कर एक मिसाल पेश की है। जून 2024 से शुरू की गई इस वाटिका में आम, पपीता, केला, सहजन, टमाटर, पालक और अन्य फल सब्जियां उगाई जा रही हैं। यहां तैयार होने वाले फल बच्चों और उनके परिवारों को वितरित किए जाते हैं, जबकि सब्जियों का उपयोग आंगनबाड़ी के पोषण आहार में किया जाता है। जिले में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सिवनी जिले के रामगोपाल कहार को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। रामगोपाल ने बताया कि यह आर्थिक सहायता उनके वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत को मजबूती देगी। सिवनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे शिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख था फिरोज खान का, वाचन स्वर थे नवनीत चौबे के। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के कलाकार हैं मेहंदी हसन। तो आइए सुनते हैं मेहंदी हसन को।

सुगम संगीत के कलाकार हैं मेहंदी हसन। श्रोताओं लीजिए, सुनिए खुर्शीद हिलोरी की लिखी ये गजल, जिसे आवाज दे रहे हैं मेहंदी हसन। तो आइए सुनते हैं

श्रोताओं, सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे मेहंदी हसन की गाई गजल। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 बजने हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोता, अभी आपने विनोद राठौड़ और अनुराधा भसना फिल्म थी दूल्हे राजा, समीर के बोल और आनंद मिलिंद का संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गीत। जिसे हमने लिया है फिल्म ईश्वर से।

ईश्वर फिल्म में आपने कविता कृष्णमूर्ति और मुकेश को सुना अनजान खेत बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत, और इसे हमने लिया फिल्म एक दूजे के लिए से। आवाज लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम की, आनंद बख्शी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं एक दूजे के लिए फिल्म से लिया

इस फिल्म में आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना साहिर के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म संगीत आप आकाशवाणी के शिवप्री केंद्र से सुन रहे हैं, आइए सुनते हैं।

जिसे हमने लिया फिल्म दर्द से, आवाज किशोर कुमार आशा भोसले की, नक्श लायलपुरी की रचना और खयाम का संगीत। तो आइए सुनते हैं दर्द फिल्म से लिया

करता दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा मीठा मीठा प्यारा प्यारा ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगले कार्यक्रम की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: देश का प्रसारण है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म लेकिन का ये बहुत प्यारा सा गीत। स्वर थी लता मंगेशकर की, गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत था हृदयनाथ मंगेशकर का। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। स्वर है उदित नारायण की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत निर्देशन है उत्तम सिंह का।

कार्यक्रम का अगला गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में। ये गीत रचना है फैज अनवर को और इसे संगीत में बनाया है साजिद वाजिद ने। फिल्म है दबंग।

लीजिए अब सुनिए राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म के सिंह इज किंग का ये गीत। गीत लिखा है मयूर पुरी ने और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और ये है आकाशवाणी भोपाल। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रावण से। ये गीत गाया है नंदिनी श्रीकर और साथियों ने। शब्द रचना है पंछी जालौनवी की और संगीत है अभिजीत नलानी का।

कार्यक्रम का अगला और बहुत खूबसूरत गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसे संगीत में बनाया है उत्तम सिंह ने।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं फिल्म मोहरा का गीत। स्वर है पंकज उदास और साधना सरगम के। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत है बिजू शाह का।

पेश है फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बागी से। स्वर है अमित कुमार और अनुराधा पोडवाल की, शब्द रचना है समीर की और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष विश्व भर में लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल जबलपुर में होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों, विकास खंडों और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष में देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाया जा रहा है। 17 से 26 जून तक इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्री मानसून के चलते आज 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास।

सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से। सुमधुर आवाज है लता मंगेशकर की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। इसी गीत को सुनना चाहा है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश इन सभी श्रोताओं की है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर श्रीमती सविता, बेबी स्वाति, माही पूजा और इनका पूरा परिवार। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म महबूबा का ये बहुत प्यारा सा गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। ये गीत रचना की है आनंद बख्शी ने और इसे संगीतमय बनाया है राहुल देव बर्मन ने।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक लिख भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मनसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। इसी गीत को सुनना चाहे घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मंजिल फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत, जिसमें सुमधुर आवाज है लता मंगेशकर की। ये गीत लिखा है योगेश ने और इसकी धुन बनाई है RD बर्मन ने।

प्रदेश का प्रसारण है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में हम तक फरमाइश लिख भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा धतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा ने इसी गीत को पसंद किया है। महादेव घाट अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने इसी गीत को पसंद किया है। राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन और चीकू सल्लू ने। उपाध्याय नगर देवास से पुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा और शिवम वर्मा ने इसी गीत के लिए हम तक फरमाइश लिख भेजी है। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, सुनीता, संगीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। श्रोताओं आप सभी ने सुनना चाहा है इस फिल्म का गीत जिसका नाम है दिल का क्या कसूर। स्वर हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के। ये गीत लिखा है अनवर सागर ने और अनवर सागर के लिखे गीत को संगीत में बनाया है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी का दूसरा भाग।

0: भुवन मोहिनी इंद्रप्रस्थ गई है, तो वह उससे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिया। क्या वो भुवन मोहिनी से मिल सका? जानने के लिए सुनते हैं धारावाहिक भुवन मोहिनी की दूसरी कड़ी।
1: भुवन मोहिनी, ऐसा एक भी क्षण नहीं होता जब तुम मेरी दृष्टि के सामने नहीं होती। तुम मेरा परित्याग करके किस लोक को चली गई हो?
2: मैं स्वप्न लोक की छाया हूँ राजकुमार, एक छलावा बनकर तुम्हारे जीवन में समाई हुई हूँ। तुम मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। मेरा चिंतन करना भूल जाओ। देखो, मेरे कारण तुम्हारे जप तप और जीवन के सारे शुभ कार्य व्यर्थ हो जाएंगे। मैं तो वायु तरंगिणी बनकर अंतरिक्ष में अशांत होकर उड़ती फिरती हूँ। किसी श्रापवश अप्सरा का जीवन पाकर भूलोक में अवतरित हुई हूँ। फिर भी मुझे अपने पूर्व जीवन का पूर्ण स्मरण है राजकुमार। मैं तुम्हारी भी पूर्व जीवन से परिचित हूँ। तुम देवलोक से भ्रष्ट होकर भूलोक में आए हो। वहां भी तुमने मुझे प्राप्त करने का प्रयास आरंभ किया तो देवगण तुमसे असंतुष्ट हो गए। तुम्हारे आकर्षण में मैंने भी देवताओं की अवहेलना आरंभ कर दी और देवता हम दोनों से रुष्ट हो गए और देवलोक से निष्कासित कर दिया। तुमने राजराजेश्वर के महल में जन्म लिया और मैंने अपने पूर्व जीवन के अनुकूल एक अप्सरा के गृह में। इसलिए अपने पूर्व जीवन में लौट चलने के लिए आवश्यक है कि मेरे रूप की ज्वाला में विदग्ध ना बनो। जाओ जाओ ना, मुझे सर्वदा के लिए भूल जाओ।

0: एक मृग मरीचिका के सदृश? क्या वास्तव में भुवन मोहिनी मेरे जीवन में छलावा ही सिद्ध होगी? ये कौन था जो स्वप्न के बहाने पूर्व जन्म की कथा का स्मरण दिलाकर शून्य में विलीन हो गया? क्या वास्तव में इस स्वप्न की बातें सत्य हैं? क्या यह सच है कि भुवन मोहिनी पूर्व जन्म में एक अप्सरा और मैं देवलोकवासी था? क्या नारी का आकर्षण देवत्व के पद से भ्रष्ट करके भूलोक का जीवधारी बनाता है? क्या भूलोक में नारी का आकर्षण भ्रष्ट नहीं करता? यदि करता है तो फिर इस जन्म के पश्चात मुझे और क्या बनना पड़ेगा? देवत्व से पतित होने पर मनुष्यत्व का पद मिला, किंतु यदि मनुष्यत्व से भी पतित हुआ तब किस योनि में जाना होगा? आह, मैं क्या करूं? कौन मेरे संदेहों का निराकरण करेगा? अरण्यक, अरण्यक!
1: युवराज, क्या हुआ?
0: क्या बात है? रथ रुका हुआ क्यों है?
1: अश्वों को विश्राम देना अनिवार्य था युवराज।
0: ओह, ठीक है। विश्राम के उपरांत संध्या में ही यात्रा पुनः आरंभ होगी।
1: संध्या में ही?
0: हाँ, सारथी से कह दो, हमारी यात्रा अनवरत तब तक चलती रहेगी जब तक इंद्रप्रस्थ

0: नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा ना, तुम सो जाओ।
1: झपकी आई ही थी कि तुमने जगा दिया। रात्रि में फिर से यात्रा करनी है?
0: रात्रि में नहीं, संध्या काल में ही।
1: संध्या काल में ही? तब तो चलो बात ही करते हैं। बताओ क्या बात हो गई?
0: सारथी, तुम्हें पता है कि हमारे स्वामी कहाँ जा रहे हैं?

0: हाँ, तुम ही ने कहा था कि इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं।
1: क्यों जा रहे हैं ये बताओ।
0: तुम ही ने मना किया था, अब तुम ही पूछ रहे हो। फिर भी बताता हूं, जहां तक मैं जान पाया हूं, भुवन मोहिनी को निकाले जाने के कारण ही राजकुमार भी राज

0: तुमसे कहूं कि ना कहूं, बिना कहे भी तो नहीं रहा जाएगा।
1: आराम मिलेगा, कहकर देखो।
0: सारथी देखो तो कितना नैतिक पतन हो गया है। एक क्षुद्र नर्तकी के लिए युवराज का सिंहासन त्याग देना, कौन इसे उचित कहेगा?
1: बात तो ठीक कही तुमने, परंतु हो सकता है भुवन मोहिनी का मूल्य युवराज अधिक समझते हो राज सिंहासन की तुलना में।
0: छी, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? ये तो घोर सर्वनाश है, घोर सर्वनाश। राज राजेश्वर का भौतिक सुख त्याग कर रूप की वासना में जीवन को होम कर देना निराह मोह नहीं है तो क्या है? सारथी, तुम मेरी सहायता करो।
1: कैसी सहायता?
0: किसी भी प्रकार से राजकुमार को पतन की गर्त में जाने से हमें बचाना होगा।
1: हमें?
0: वरना सम्राट द्युमत सेन के बाद राज सिंहासन का भगवान ही स्वामी है। सोचो, अगर सम्राट द्युमत सेन के बाद युवराज सिंहासन पर न बैठे तो साम्राज्य का क्या होगा?
1: हाँ,
0: एक राजा के बिना देश कैसे चलेगा? बोलो, हे भगवान, मैं तो सोच के ही परेशान हो गया। पश्चिम और उत्तर से शक और हूर जातियां आक्रमण कर देंगी, जिसका सामना छोटे छोटे राज्य नहीं कर सकेंगे। परिणाम क्या होगा ज्ञात है, परतंत्रता। राष्ट्र की प्रजा असहाय की तरह लूटी जाएगी। सीमा प्रांत की असहाय नारियां विजेताओं की विलास का साधन बन जाएंगी। राष्ट्र की पतिव्रता देवियां कुल कलंकनी कहलावेंगी सारथी, और विश्व की सर्वश्रेष्ठ नारियां भुवन मोहिनी की ही भांति तुच्छ बनकर राष्ट्र के सर्वनाश का कारण बनेंगी।
1: तब क्या हो रण्यक?
0: तुम मेरी सहायता करो।
1: कैसे?
0: सुनो, इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर इससे पहले कि युवराज और भुवन मोहिनी की भेंट हो, हम उससे मिलकर सब कुछ बता दें।
1: किससे मिलकर?
0: अरे भुवन मोहिनी से।
1: उससे क्या होगा? भुवन मोहिनी विजय श्रवा को भुला देगी।
0: अवश्य, उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करना होगा। यदि वो सबके लिए अपने सुखों का त्याग कर सकी तो अच्छा ही है, अन्यथा राष्ट्र पर आने वाली विपत्ति को हटा देने के लिए आवश्यक होगा भुवन मोहिनी का वैयक्तिक बलिदान।
1: तात्पर्य?
0: यह मैं नहीं जानता, किंतु इतना तो मैं कह सकता हूं कि भुवन मोहिनी स्वयं राष्ट्रहित को प्रधानता देगी। देना भी चाहिए, राष्ट्र का हित सर्वोपरि है सबके लिए।
1: तो फिर साफ साफ बताओ हमें क्या करना होगा।
0: जैसे भी संभव हो भुवन मोहिनी से विजय श्रवा को अलग रखने का प्रयास करना होगा।
1: अरण्यक, संध्या हो गई है।
0: होने दो।
1: अरे हमें प्रस्थान करना है।
0: अरे हाँ, परंतु ध्यान रखना इस बात का। चलो दैनिक चर्या करके

0: गया, चलो चलो।
1: मित्र सो रहे हैं, सो जाइए।
2: कहां जा रहा हूं, किस उद्देश्य से जा रहा हूं, क्या होगा परिणाम?
3: केवल सर्वनाश, अधिक कुछ नहीं।
2: हाँ, सर्वनाश?
3: हाँ, क्या तुम सचमुच उस प्रणयिनी को प्यार करते हो जो तुम्हारी दृष्टि से निर्वासित है?
2: हाँ।
3: क्या तुम्हें भुवन मोहिनी के अक्षय यौवना होने पर विश्वास है?
2: हाँ।
3: क्या तुम्हारा आज वाला अनुराग रंजित हृदय अपरिवर्तनशील है?
2: हाँ।
3: क्या उसकी रूप की झांकी आज जैसी कल भी रहेगी विजयश्रवा? क्या दो दिन में फूल की तरह मुरझा जाने वाला सौंदर्य अपनी सहस्त्र किरण कांति से तुम्हारी रंगीली वासनाओं को चमकाता रहेगा? क्या रुग्णावस्था झुलस कर इस सौंदर्य को क्रूर न बना देगी? क्या बुढ़ापे में आज का स्निग्ध मनोरम और आकर्षक शरीर झुर्रियों की लटकन से घृणित वृत्तियों को ना उकसाएगा? क्या स्वयं तुम भी आज की ही भांति तरुण, स्वस्थ और बलिष्ठ रहोगे? बंद करो ये प्रश्नों की श्रृंखला। अरे, जीवन स्वयं ही अनित्य है, तो फिर भुवन मोहिनी का सौंदर्य कैसे अनित्य नहीं होगा?
4: सब कुछ नश्वर है, सब कुछ अनित्य है। यह जीवन अनित्य, यह शरीर अनित्य, यह सृष्टि अनित्य और इस सृष्टि के सारे व्यापार अनित्य।
3: किंतु इस अनित्यता का भय ही तो सत्यम शिवम सुंदरम की खोज में जीव को अग्रगामी बनाता है। इस अनित्यता में ही तो जीवन का शाश्वत सत्य है, उससे इस अनित्य शरीर को क्यों वंचित रखा जाए? इस लघु जीवन में पानी की बूंद बूंद की भांति जहां सारे व्यापार स्वयं प्रेरित होकर चल रहे हैं, मैं बाधा क्यों दूं? जब परिवर्तन ही सृष्टि का अटल नियम है, तब भुवन मोहिनी का मधुमय यौवन कैसे स्थायी रहेगा?
4: इसीलिए तुम्हें शीघ्रता है।
3: हाँ, इसीलिए, ताकि इस अनित्य यौवन को स्वप्न की भांति विलीन होने के पूर्व भोग लूं। अन्यथा फिर तो केवल पश्चाताप की घड़ियां ही शेष रह जाएंगी। यौवन को यौवन की ही प्यास होती है, यौवन को यौवन के जल से ही तृप्त करना होता है, मात्र यौवन के जल से।
0: युवराज, आप इंद्रप्रस्थ पहुंचने वाले हैं।
3: शुभ सूचना दी तुमने अरण्यक। अच्छा बताओ, तुम सब लोग मुझे यहां क्या कहोगे? स्मरण है ना?
0: अवश्य स्वामिन, हम लोग यहां पर आपको श्रेष्ठीवर कहकर पुकारेंगे।
3: श्रेष्ठीवर? हाँ, मैं श्रेष्ठीवर हूं यहां इंद्रप्रस्थ में।
0: मित्र, कितने दिनों बाद आपकी उन्मुक्त हंसी सुनी, बहुत अच्छा लगा।
3: सुनो अरण्यक, सारथी को कह दो कि रथ को यमुना के तटवर्ती किसी सुरम्य उपवन में छिपाकर रख दे।
0: अरे सुनो सारथी, रथ को यमुना तट पर किसी सुरम्य उपवन में छुपाकर खड़ा करना।
5: ठीक है अरण्यक।
0: आइए युवराज। अरे वाह युवराज, आपने वस्त्र बदल लिए, आप तो विशुद्ध श्रेष्ठीवर ही लग रहे हैं।

0: साधु साधु, अरण्यक कितना सुंदर वन है। अपने रथ को यहीं पर कहीं खड़ा करवाओ, लगता है कोई आ रहा है। अरण्यक उससे पूछो किसका वन है ये।
1: अरे भाई सुनो, कौन हो तुम? उपवन का माली हूं महोदय। आप लोगों का परिचय?
2: बस ये समझ लो कि हमारे मालिक बहुत बड़े श्रेष्ठी हैं।
1: श्रेष्ठी हैं?
2: हाँ, वो व्यापार के उद्देश्य से इस नगरी में आए हैं। अच्छा, इस सुंदर उपवन के स्वामी के बारे में तनिक बताओ।
1: ये उपवन चंद्रवंशी महाराज आदित्य सेन का है, जो इंद्रप्रस्थ से मिले जुले एक बड़े भूभाग के महाराजा हैं। और आजकल इस उपवन का उपयोग उनकी एकमात्र राजबाला चंद्रहासिनी के मनोविनोद के लिए किया जाता है।
2: अच्छा, तो क्या अपरिचितों का निवास निषेध है?
1: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, किंतु ये आवश्यक है कि उपवन में निवास करने वाला व्यक्ति या तो इंद्रप्रस्थ से दूर का निवासी हो, या फिर वो किसी राजवंश का हो, अथवा किसी शेष वंश का लक्ष्मी पुत्र हो। साधारण लोग यहाँ नहीं रह सकते।
2: भला ऐसा क्यों?
1: इसलिए कि यदि उपवन की कोई हानि हुई तो दंड स्वरूप सहस्त्र मुद्राएं देनी पड़ती हैं।
2: अच्छा।
1: और ये तो तुम जानते ही होगे कि ये दंड कोई राजवंशी या श्रेष्ठी ही दे सकता है।
2: हाँ हाँ, ये तुमने सच कहा। सुनो, तनिक इधर तो आओ।
1: क्यों?
2: ये लो 50 स्वर्ण मुद्राएं।
1: 50 स्वर्ण मुद्राएं किस लिए?
2: अरे तुम्हारा पुरस्कार।

0: हम लोग इस उपवन की एक पत्ती को भी नष्ट नहीं करेंगे, और यदि भूल से ऐसा हो भी गया तो तुरंत उसका दंड भी भर देंगे।
1: मुझे विश्वास हो गया। जानते हो,
0: हाँ,
1: अभी हाल ही में राजकुमारी यहाँ से लौट कर गई हैं।
0: अच्छा,
1: ये जो पर्णकुटी देख रहे हो ना,
0: हाँ,
1: विशेष रूप से उन्हीं के लिए बनवाई गई थी।
0: अरे वाह वाह, ये पर्णकुटी तो किसी राजप्रासाद से कतई कम नहीं है।
1: बिल्कुल, और इसकी सारी सजधज अभी भी ज्यों की त्यों है।
0: सुनो माली, क्या हमारे मालिक इस पर्ण कुटी में निवास कर सकते हैं?
1: तुम्हारे मालिक श्रेष्ठ वंशी हैं ना?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
1: परंतु वो कब तक रहेंगे यहाँ?
0: माह दो माह, अब चिंता मत करो, जब चाहोगे चले जाएंगे।
1: तब तो ठीक है, आप लोग अपनी व्यवस्था कर लीजिए, किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो मुझे बताइए। हाँ,
0: अवश्य श्रीमान, अवश्य, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरण्यक, तुमने अद्भुत कार्य किया। इंद्रप्रस्थ में ऐसे सुंदर आवास की मैंने कल्पना भी नहीं की थी।
0: आपकी प्रसन्नता ही मेरे जीवन का ध्येय है मित्र। अब आप विश्राम करें और हम लोग शेष व्यवस्थाएं करते हैं।
2: हाँ अवश्य।
0: चलो, युवराज तो विश्राम करने गए, ये सारथी कहाँ गया?
3: सारथ, सारथ, मैं यहाँ घोड़ों के पास हूँ अरण्यक।
0: हाँ हाँ, देखो हम लोग इंद्रप्रस्थ आ गए।
3: रथ को मैं हिलाया हूँ।
0: हमें अब अपनी योजना पर अमल करना है।
3: वो भी मुझे स्मरण है।
0: राष्ट्रहित के लिए किसी भी स्थिति में राजकुमार विजय शर्मा से नर्तकी भुवन मोहिनी का मिलाप नहीं होना चाहिए।
4: अधिक तेज मत बोलो, घोड़े उछलने लगेंगे।
0: अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
5: महाराज आदित्य सेन की जय हो।
6: आइए महामाते ओंकार देव, बैठिए।
5: क्या बात है महाराज, आप कुछ चिंतित दिख रहे हैं, क्या राजकाज के बारे में चिंतित हैं?
6: नहीं महामाते, आपके होते हुए हमें राजकाज की चिंता कभी नहीं हुई और न होगी, परंतु हमें राजकुमारी चंद्रहासिनी के विवाह की चिंता है। उनके लिए कोई उपयुक्त वर न मिलना हमारे लिए तनाव का कारण बना है। कोई भी राजवंशी राजकुमार चंद्रहासिनी के रूप गुण विद्या बुद्धि के अनुरूप ठहर ही नहीं पाता।
5: महाराज क्षमा चाहता हूँ आपको बीच में रोकने के लिए। आपके यमुना तट स्थित उपवन में धारा नगरी से आए हुए एक श्रेष्ठी वर ठहरे हुए हैं।
6: तो क्या हम अपनी राजकुमारी का विवाह एक श्रेष्ठी से करेंगे?
5: क्षमा चाहता हूँ महाराज, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई।
6: हाँ बोलिए।
5: उस श्रेष्ठी के अंग प्रत्यंग की कमनीयता, उसका रूप गुण प्रभाव और आकर्षण, उसका तेजस्वी ललाट, विशाल नेत्र, वृषभ कंध, उन्नत ग्रीवा, चौड़ा वक्षस्थल, केहरी कटी, उसके चक्रवर्ती राज राजेश्वर होने के संकेत देते हैं।
6: अच्छा,
5: वो श्रेष्ठी आसपास के ग्रामीण जनों में कौतूहल का विषय बना हुआ है।
6: यदि ऐसा है तो उसे पहचानना कोई कठिन काम नहीं है, यह काम भुवन मोहिनी कर सकती है।
5: भुवन मोहिनी,
6: जिसे धारा महाराज ग्युमत सेन ने निर्वासित कर दिया था और हमने अपने यहाँ शरण दे रखी है।
5: अच्छा अच्छा, वो नर्तकी?
6: हाँ वही, भुवन मोहिनी धारा नगरी के सम्राट ग्युमत सेन की प्रमुख गायिका रही है, और वो वहाँ के प्रधान सामंतों और श्रेष्ठियों को अवश्य पहचानती होगी।
5: अवश्य देव, यह कार्य उसके द्वारा सरलता से कराया जा सकता है।
6: भरत।
7: आज्ञा महाराज।
6: जाकर भुवन मोहिनी से कहो कि हमने उन्हें याद किया है।
7: जो आज्ञा।
6: परंतु महामात्य, यदि वो कोई राजवंशी हैं, तो इस तरह श्रेष्ठी बनकर आने की क्या आवश्यकता है, कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है?
5: यह बात विचारणीय है महाराज, परंतु इसका निराकरण भी उसकी पहचान होने के बाद ही किया जा सकता है।
7: महाराज, देवी भुवन मोहिनी उपस्थित होने की आज्ञा चाहती हैं।
6: हाँ हाँ, आज्ञा है।
7: आइए देवी।
8: महाराज।

0: आदित्य सेन को प्रणाम।
1: नर्तकी भुवन मोहिनी, राजसभा तुम्हारे बिना सुनी ज्ञात होती है। तुम्हें सर्वदा मेरे आने के पूर्व ही राजसभा में उपस्थित होना चाहिए।
0: अपराध क्षमा हो देव, दासी के अस्वस्थ होने के कारण ही आज अनुपस्थित होने का अपराध बन पड़ा है। भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी।
2: नर्तकी इधर आओ।
0: प्रणाम महामात्य।
2: देखो नर्तकी, क्या तुम्हें ज्ञात है कि यमुना के किनारे पर अवस्थित राजोद्यान में धारा नगरी का कोई व्यक्ति विश्राम कर रहा है?
0: धारा नगरी का?
2: हाँ, धारा नगरी का।
0: मुझे ज्ञात नहीं है महामात्य।
2: अरे तो क्या तुम अभी राजकुमारी के साथ उस उपवन में निवास नहीं कर रही थी?
0: देव, उस समय कोई नहीं था।
2: तो ठीक है, कल वहां जाकर गुप्त रूप से पता लगा कर आओ कि उस राजोद्यान में स्थित पर्णकुटी में ठहरने वाला कौन है। यद्यपि वह अपने को धारा नगरी के सर्वश्रेष्ठी का पुत्र बताता है, परंतु हमें शंका है, उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी चाहिए।
0: जो आज्ञा महामात्य, कल राजकुमारी दीपरागिनी सिद्ध करने वहाँ पुनः जाने वाली है, मैं भी चली जाऊंगी। महाराज, राजकुमारी ने अपने पिछले निवास काल में दीपरागिनी का विशेष अभ्यास किया था महाराज, कल उसी का महोत्सव है।
1: अच्छी बात है,
2: किंतु वहाँ उस अपरिचित व्यक्ति के होते हुए क्या बाधा उत्पन्न नहीं होगी नर्तकी?
0: नहीं महामात्य, अब वो पर्णशाला में नहीं राजोद्यान के प्रासाद में अपना कार्य करेंगी, और जहाँ तक संभावना है वो व्यक्ति पर्णकुटी में ही रुका होगा।
2: हाँ हाँ, पर्णकुटी में ही रुका है, तुम उसके बारे में पूरी जानकारी ले आना।
0: जी महामात्य।
1: भुवन मोहिनी, चलो, माना कि आज तुम कुछ अस्वस्थ हो, फिर भी तुम्हारा नृत्य और गायन देखे बिना हम भी अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए चलो अपना नृत्य और गायन प्रस्तुत करो, परंतु उसके बाद महामात्य ने जो आदेश दिया है उसको अवश्य पूरा करना।
0: जो आज्ञा देव।
3: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आपने सुना धारावाहिक भुवन मोहिनी का दूसरा भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
4: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रूट पर आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष विश्व भर में लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल जबलपुर में होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। नीट परीक्षा के लिए भोपाल में कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 21 जून को 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षार्थियों से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि नीट परीक्षा के चलते शहर के कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रदेश में प्री मानसून के चलते आज 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच अब से कुछ देर बाद 1:30 बजे से चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

0: बारिश की बूंदें भले ही कितनी छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे प्रयास चाहे कितने ही छोटे हों, जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस सुंदर से विचार के साथ हाजिर हूँ मैं कल्पना मिश्रा, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा के साथ। स्वीकारिए मेरा नमस्कार। बहनों, यूं तो सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं लेकर आती है, जिससे उनका समाज में स्तर ऊंचा हुआ है। वैसे ही एक योजना पारित की गई, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक भी कहा जाता है, जो कि एक ऐतिहासिक भारतीय कानून है और ये लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी कि एक तिहाई आरक्षित करता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि वह समाज, वह राष्ट्र प्रगति कर रहा है। उनकी ये सोच साकार हुई और ये विधेयक बनाया गया। बहनों, इसकी विशेषताओं पर बात करें तो यह कानून सीधे तौर पर लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही कुछ आरक्षित सीटों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसकी जो समय सीमा है वो 15 वर्षों के लिए प्रभावी होगी, परंतु इसके बाद इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद द्वारा नया निर्णय लिया जा सकता है। बहनों, यह कानून परिसीमन प्रक्रिया और नई जनगणना के बाद लागू होता है। यह संविधान संशोधन विधेयक सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश किया गया था। दोनों सदनों द्वारा भारी बहुमत से पारित होने के बाद यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया और भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है, जो कि महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। बहनों, आज हैं हमारे बीच संध्या तिवारी जी, जो कि शांति कुंज हरिद्वार महिला मंडल की कार्यकर्ता समाज सुधारक हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं। तो आइए इसी विषय पर इनसे बातचीत करते हैं।
1: आपका हमारे कार्यक्रम महिला सभा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आप इस संस्था से कब से जुड़ी हैं और इसका उद्देश्य क्या है, वो आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: इस संस्था में जुड़ने का सौभाग्य बचपन से ही प्राप्त हुआ। मेरे माता पिता गायत्री परिवार से जुड़े और उन्होंने मुझे प्रेरणा के रूप में इस गायत्री परिवार के साथ जोड़ा। संस्था का उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण है। वास्तव में देखा जाए तो धरती का देवता मनुष्य ही है, पर उसके पूर्व मनुष्य मनुष्य बने और मनुष्य से ऊपर उठ करके देवता बन जाए, इसके लिए ये ऋषि प्रणीत योजना है, जिसे गायत्री परिवार के नाम से जाना जाता है, युग निर्माण योजना के नाम से जाना जाता है और विचार क्रांति अभियान के नाम से जाना जाता है। युग निर्माण योजना कहने का तात्पर्य यह है कि इस योजना में मूलभूत तीन सूत्रों को लिया, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। इन तीनों के निर्माण से ही विश्व निर्माण संभव है, जो हमारी संस्कृति में एक नारा है, वसुधैव कुटुम्बकम, और उसके पूर्व आत्मवत सर्वभूतेषु। इसी को हमारा मिशन कहता है, आत्म कल्याण से लोक कल्याण। आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, पहले अपनी आत्मा का के उत्थान के साथ। यदि केवल आत्मा के उत्थान के साथ बहुत लोग गुफा कंदरा में बैठ करके तपश्चर्या इत्यादि करते हैं, वो आवश्यक है, लेकिन समाज में भी एक प्रकार की तपश्चर्या होती है। समाज के लिए अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर व्यक्ति जब तक लोक कल्याण या परमार्थ भाव के साथ नहीं चलेगा, तो ये समाज का उत्थान संभव नहीं है। मिशन का ये उद्देश्य है। धरती पर स्वर्ग का अवतरण से तात्पर्य कि धरा एक सुखी, समृद्ध, सानंद, उत्साह पूर्ण जीवन जीने की स्थिति में प्रत्येक मनुष्य रहे। धरती का स्वर्ग का अवतरण का तात्पर्य यह है। ये दोनों सूत्र लेकर के मिशन चल रहा है। वैसे देखा जाए तो मिशन का बड़ा व्यापक उद्देश्य है।

0: लघु से विभू तक की यात्रा ये मिशन करने की प्रेरणा देता है कि छोटे से बड़े कैसे बने, और छोटे छोटे जीव जंतुओं से लेकर के जो हमें दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म स्तर के जीव जंतुओं से लेकर के ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सारा का सारा कैसे उत्कृष्ट बने, इन विचारों को लेकर के ये मिशन चल रहा है।
1: जी दीदी, आपके विचार बहुत ही महान है। तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली?
0: जैसा कि आपको गायत्री परिवार के बारे में जानकारी होगी, गायत्री परिवार ने नारी जागरण का बीड़ा उठाया, और उस नारी जागरण के बीड़े के साथ जिसको हम महान सत्ता ने इस बीड़ा को उठाया, उसे हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी बोलते हैं, उन्होंने ऐसे समय पर नारियों को के उत्थान का मौका दिया जब नारियां केवल चार दीवारी के अंदर बंद थीं, शोषित थीं, दमित थीं, उनको कहीं स्वतंत्र जीने का या अपने आप को उठाने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। ऐसे समय पर परम पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया कि हमको नारियों को, महिलाओं को ऊपर उठाना है, और उन्होंने उसके लिए जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो पहले कभी था, आदिम जमाने में, आदिकाल में ये था कि हमारे यहाँ स्त्री पुरुष दोनों बराबर थे, महिलाएं भी वो सारा काम करती थी जो पुरुष करते थे, पर वो बीच का काल जो हमारा गुलामी का काल आया, परतंत्रता का काल आया, उस काल में महिलाओं का पतन हुआ, उनके जीवन का पतन हुआ, और एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी तरह वो घर की चार दीवारी में बंद करके उन्होंने एक प्रकार से उनका जीवन ही बंद हुआ। ऐसे समय पर परम पूज्य गुरुदेव ने बहनों को लेकर के, नारियों को लेकर के, छोटी छोटी कन्याओं को लेकर के एक क्रम शुरू किया, उन कन्याओं को प्रशिक्षण दे करके जिन्हें उन्होंने देवकन्या नाम दिया। देवकन्याओं के माध्यम से पूरे देश में जन जागरण का क्रम संपन्न कराया। वो देवकन्याएं साधना भी करती थी, और उस साधना कर श्रेष्ठ विचारों को जन जन तक फैलाने का काम यज्ञ के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से करती थी। एक बार वो देवकन्याओं की टोली आई, उन देवकन्याओं की टोली के साथ मुझे रहने का, बातचीत करने का, उनको देखने का, निकट से देखने का मौका लगा, और मेरे अंदर प्रेरणा जागी कि मैं भी ऐसा ही काम करूंगी।
1: जी जी जी।
0: और उस प्रेरणा के साथ मैंने इस मिशन को और पक्के से चुना, और चुन करके गुरुदेव माता जी को अपना गुरु बनाया, इस संस्था को अपना लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य बना करके इस संस्था में मैं कितना मैं कर पाई मैं इसको नहीं कह पाऊंगी, लेकिन प्रयास मेरा ये कि इस संस्था में मैं पूरी तरह अपने आप को झोंक करके काम करती रही, और अभी तक मैं काम कर रही हूँ।
1: जी जी जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दीदी, आपको हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो आखिर में आप अपने सुंदर विचार उन तक पहुँचाएंगी तो हमें बहुत खुशी होगी।
0: सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमें आप तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। ये अपनों से अपनी बात है, कई बार अपनों से अपनों तक पहुंच नहीं पाते, इससे ये सशक्त माध्यम है, इस सशक्त माध्यम का मौका मुझे मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पर एक निवेदन तो मैं करना चाहती हूँ कि हमारा देश भारत, ये देश सोने की चिड़िया और जगत गुरु रहा है, हम सबको मिलकर के, क्योंकि उस क्रम में एक प्रकार से देखा जाए देश पटरी पर आ चुका है, जगत गुरु बनने की पूरी संभावनाएं, पूरे आसार, पूरी किरण दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा हम लोग मिलकर के इस दिशा में हम अपने देश को धक्का लगाएं, और आध्यात्मिक देश होने के नाते हम सब अपनी साधना को या अपने आध्यात्मिक या आत्मिक उत्थान को देखते हुए हम अपने आप को साधना की ओर ले जाएं, क्योंकि हमारा देश साधना की धुरी पर खड़ा है। आपको एक निवेदन और करना चाहूंगी, जब हमारा देश परतंत्र था तो दो धड़े काम कर रहे थे, एक धड़ा बाहर जो सीधा देश की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में भाग ले रहा था, और एक धड़ा अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप में काम कर रहा था, जिन्हें हम ऋषि कह सकते हैं, जिन्हें हम साधक कह सकते हैं। एक बल था साधना का बल, उन लोगों ने, ऋषियों ने, साधकों ने, सिद्धों ने, संतों ने, तपस्वियों ने साधना का बल देश को दिया, और उस बल के सहारे लोगों ने प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ करके देश को आजाद किया। वही क्रम हम सब मिलकर के करें, अपने साधना के बल को मजबूत करें, अर्थात हम साधना की धुरी पर खड़े होकर के अपने आप को, अपना निर्माण करें, व्यक्ति निर्माण जिसको कहा है, व्यक्ति निर्माण करें, और साधना के बल पर ही यदि हमारा स्वयं का निर्माण हो तो परिवार निर्माण सहज हो जाता है। हम बने तो हमारा परिवार बना, व्यक्ति एक इकाई है, परिवार उस इकाई के सहारे परिवार बनता है और इस परिवार के सहारे समाज बनता है और समाज के सहारे पूरे विश्व का निर्माण होता है।

0: निवेदन ये है कि हम मिल करके इस दिशा में सार्थक प्रयास करें, और सार्थक प्रयास कर पूरी आशा और पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में हम उस विश्व में जी सकेंगे धरती पर जहाँ स्वर्ग दिखाई देगा, उस स्वर्ग में हम सब सुखी सानंद समृद्ध आत्मीय भाव से जी सकेंगे, जी। अपनत्व भाव से जी सकेंगे, एक दूसरे के साथ जी सकेंगे जी।
1: दीदी आप एक पंक्ति में अपनी संस्था के बारे में कुछ बताइए।
0: एक पंक्ति में यदि संस्था के बारे में कहा जाए तो एक ही उद्देश्य है मनुष्य का कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। दूसरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। संस्था केवल हर व्यक्ति से हर मनुष्य से यही चाहती है।
1: दीदी आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और साथ ही इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की, हमें भी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: रास्ते मुश्किल नहीं सोच कमजोर होती है, रास्ते मुश्किल नहीं सोच कमजोर होती है, इरादा मजबूत हो तो मंजिल भी झुकती है।

बहनों, महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में है, मतलब कि कोई ऐसा काम उनसे अछूता नहीं है जिसमें उनकी भूमिका ना रही हो, और सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इस काम में। अब जैसे एक और योजना है,

ज्योति योजना, यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक समानता लाना है, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है और लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथ में शिक्षा और कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम आसपास के सरकारी स्कूलों की छात्राओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रति प्रेरित करेगी और उन्हें जानकारी देगा, और इसका उद्देश्य कक्षा 9 से कक्षा 12 तक मेधावी छात्राओं पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से ग्रामीण और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं पर, ताकि वैज्ञानिक क्षेत्रों में लैंगिक असमानता को कम किया जा सके। यह कार्यक्रम की विशेषता यह भी है कि यह वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है, मतलब प्रमाणित तथ्य के आधार पर समस्या का समाधान करना, कैरियर के अवसरों को बढ़ावा देना, जैसे लड़कियों को जेई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, साथ ही साथ अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का पूरक माना गया है। बहनों, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम इतना प्रभावशाली साबित हो रहा है कि कक्षा 11वीं और 12वीं में विज्ञान विषय चुनने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है। गणित और विज्ञान विषय में रुचि बढ़ने के साथ साथ इन विषयों पर समझ बेहतर हुई है। हम देख रहे हैं कि जेई और नीट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है। लड़कियों में इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में कैरियर बनाने को लेकर और भी ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ा है, तो इस तरह यह योजना महिला उत्थान के लिए प्रभावशाली साबित हो रही है। अब आइए मनोरंजन की तरफ चलते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में प्यारा सा गीत। फिल्म है

अभी हमने दो कलियां फिल्म का गीत सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। बहनों, इस चिपचिपाहट और उमस भरी गर्मी में स्किन प्रॉब्लम होना तो लाजमी है, जैसे एक्ने की समस्या, पिंपल्स होना और सन टैनिंग। अब ऐसे में हमारी बहनें ना जाने कितने महंगे प्रोडक्ट यूज करती हैं, परंतु एक बार ऐसा प्रोडक्ट आप घर पर बनाकर तो देखिए जो कि सस्ता और आसानी से बनने वाला है, जिसे हम घर पर रखी हुई कुछ चीजों से बना सकते हैं। तो सबसे पहले चावल हम लेंगे कम से कम 4 चम्मच के लगभग। चावल कोई सा भी चलेगा, मोटा पतला कैसा भी। इन चावल को हम अच्छी तरह से 3 से 4 पानी में धो लेंगे। याद रखिए, इस क्रीम को बनाने के लिए पहले तो सफाई का विशेष ध्यान देना होता है। अब चावल धोकर आधे घंटे के लिए रख दीजिए। आप सोच रही होंगी कि हम चावल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो चावल की तासीर ठंडी होती है, स्किन वाइटनिंग की प्रॉपर्टीज होती है इसमें, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं चावल के। तो क्रीम बनाने के लिए जो भीगे हुए चावल हैं उन्हें एक पतीले में ज्यादा पानी डालकर धीमी आंच में पका लेते हैं। चावल में पकने के बाद थोड़ा पानी होना चाहिए, थोड़ा ठंडा करके मिक्सर में पीस लीजिए। अब इसमें आप करीब 3 टेबल स्पून कच्चा दूध डालकर मिक्स कर लीजिए। अब सिंगल लेयर वाली चाय छन्नी से चम्मच की सहायता से इस पेस्ट को छान लीजिए। मोटा हिस्सा ऊपर रह जाएगा और महीन क्रीमी हिस्सा नीचे आ जाएगा, जिसकी हमें क्रीम बनानी है। इसमें विटामिन ई की 1 कैप्सूल डालेंगे, फिर 2 टेबल स्पून नारियल तेल, 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, और अगर ऑलिव ऑयल नहीं है आप आलमंड्स ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीजों को चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, तो इस तरह क्रीम बन जाएगी। अब आप इसे 15 से 20 दिनों के लिए एक कांच की एयर टाइट डब्बी में स्टोर करके रख सकती हैं। याद रखिए, इसे फ्रिज में ही रखना है, और जब इस्तेमाल करना होगा थोड़ी देर पहले इसे फ्रिज से बाहर निकाल लीजिए। इस क्रीम को चेहरे ही नहीं बल्कि हाथों में, पैरों में भी यूज कर सकती हैं। हल्के हाथों से इसे लगाकर मसाज करिए, रात के समय लगाकर मसाज करिए, सुबह फिर वॉश कर लीजिए, तो इसका और बढ़िया इफेक्ट दिखेगा और हर तरह की स्किन वाले लोग इसे लगा सकते हैं। इससे स्किन सॉफ्ट और दाग धब्बों से रहित होगी, तो आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। अब चलते चलते एक और गीत सुन लें। फिल्म है रामपुर का लक्ष्मण, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये हमारे आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत बन्ना गीत से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। और आज आप सुन रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। पेश है परछन गीत, आवाज ज्योति तिवारी की।

ज्योति तिवारी के गाए इस सोहर गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए कुछ भजन और गीत।

अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मानंद की रचना, आवाज थी प्रकाश तिवारी की। आइए अब सुनते हैं प्रकाश तिवारी की आवाज में ये गीत। रचना नीरस की है।

0: कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, कान लगे होते थे दिल लगा होता था, बस आवाज सुन भारत हंसता था रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा महाभारत दिखा, एशियाड दिखा पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा इंसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है कहानी एवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत।

0: अच्छे हम अकेले
1: वालिन साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाग कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम न रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।
2: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी आपने सुना काला पानी फिल्म का गीत शब्द रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत एस डी बर्मन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और आज हम और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नया दौर से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत ओ पी नैयर का।

0: अरे तू ही आँख का तारा, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार।
1: और कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में गाइड फिल्म का गीत, शब्द रचना शैलेंद्र की और संगीत एस टी बर्मन का।

0: लता मंगेशकर के गाए गाइड फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। ये दिवस राज्य के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। आज के ही दिन इस बात की पुष्टि हुई थी कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने इस दिशा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अमूल्य भूमिका का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सावेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा
1: कि आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें मुख्य रूप से दो बड़े शहर मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर, इसका जोड़ने वाला जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, ग्रीनफील्ड मार्ग है, नए मार्ग का कुल लंबाई 40 किलोमीटर से ऊपर जो बनना है, उससे हमारी इंदौर की दूरी ये काफी कम हो जाएगी। आने वाले समय में ये जो दो नगरों का साझा क्षेत्र है, मेट्रोपोलिटन रीजन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमारा व्यापार, इसमें हमारी शिक्षा, इसमें हमारी चिकित्सा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय, बड़े स्तर पर इनका निर्माण होने वाला है।
0: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान डायवर्जन क्लोज एक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। ये परियोजना माँ क्षिप्रा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से समय से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। वहीं नर्मदापुरम में परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला विकास खंड पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालय और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। आज भोपाल में बड़ा तालाब के बोट क्लब से लेकर टीटी नगर स्टेडियम तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का संदेश दिया। मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को इस वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश कर रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्य मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 48 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़ा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 245 नर्सिंग कॉलेजों के सत्र 2021-22 के करीब 8,000 छात्रों की परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों

0: ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गाँव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रवति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी, खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
3: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते और ये प्रूव हो चुका है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
4: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
5: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम अकेले हम अकेले तुम फिल्म के गीत से। आवाज शैली शैलेंद्र की, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत अनु मलिक का है। और पसंद करने वाले हैं आप सब डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से इसे पसंद कर रहे हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी दतरंगी से भागवत वर्मा और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म अकेले हम अकेले तुम का गीत, आवाज शैली शैलेंद्र की।

आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म यादों की बारात से। आवाज़ आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की है, शब्द रचना मजरूह की और संगीत राहुल देव बर्मन का। और पसंद करने वाले श्रोता हैं आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा। गौरीनगर इंदौर से इस गीत को पसंद कर रहे हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, श्रीमती सविता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवांडकर, श्रीमती वैशाली गवांडकर, श्वेता सुमित गवांडकर, कुमारी ध्वनि गवांडकर, परी की। आप सबकी पसंद का गीत सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म यादों की बारात से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और मैं आपके साथ हूं आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजपिए राधिका गजपिए बेबी अनिष्का और तन्मय गजपिए की। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाह है रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता देवांगन डिम्पल देवांगन। रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से इसे सुनना चाहते हैं जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जेएस नायक शोभा नायक समस्त डागला परिवार। औरंगाबाद से राजेश साबले शीतल राजेश राजदीप राजेश और राशि राजेश। आप सब सुनना चाहते हैं इंदिवर का लिखा गीत राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में आवाज साधना सरगम और कुमार शानू की है और फिल्म है जुर्म।

जुर्म फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है, आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की, और फिल्म है आस का पंछी। गीत को पसंद करने वाले श्रोताएं हैं धमनी किरवई से समीलाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल धीवर, गोविंद धीवर, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज, आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। तो सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म आस का पंछी का गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए दम लगा के हईशा फिल्म का गीत, फिल्म का गीत पपोन की आवाज़ में। शब्द रचना वरुण ग्रोवर की और संगीत अनु मलिक का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा।

अभी आपने सुना पप्पून की आवाज़ में दम लगा के हईशा फिल्म का ये गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।

पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सांवेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है और आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुगली पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा दोपहर 3:55 पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:15 पर और रात 8:35 पर। पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का 6वां भाग आप सुनेंगे शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय है 7:45। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आप सुनेंगे रात 8:00। 9:30 पर आप सुनेंगे चित्र भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारती कार्यक्रम में सुनिए विवेक कर्माही का गायन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। मीडियम वेव 188.2

3.2 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:02 और 21 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम लोक संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए लोकगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम का अगला गीत परचन गीत आवाज ज्योति तिवारी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। कार्यक्रम है लोक संगीत और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम का अगला गीत है सोहर गीत, आवाज ज्योति तिवारी की।

ज्योति तिवारी के गाए सोहर गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए कुछ भजन और गीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं तुलसीदास की रचना से, आवाज प्रकाश तिवारी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। कार्यक्रम है सुगम संगीत और अभी आपने सुनी तुलसीदास की रचना आवाज़ थी प्रकाश तिवारी की।

प्रकाश तिवारी जी के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म जो जीता वही सिकंदर के गीत से। आवाज उदित नारायण और साधना सरगम की, शब्द रचना मजरू की और संगीत जतिन ललित का।

जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। गीत लिखा था मजरू ने और संगीत जतिन ललित का था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म आशिकी से। आवाज कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की। गीत लिखा है रानी मलिक ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

अभी आपने सुना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में आशिक की फिल्म का गीत। शब्द रचना थी रानी मलिक की और संगीत नदीम श्रवण का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए अब सुनते हैं परदेश फिल्म का गीत, हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति आदित्य नारायण शंकर महादेवन की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

परदेश, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, आदित्य नारायण, शंकर महादेवन की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत नदीम श्रवण का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए रोजा फिल्म का गीत हरिहरन की आवाज में। शब्द रचना है पीके मिश्रा की और संगीत ए आर रहमान।

हरिहरन और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना रोज़ा फिल्म का गीत, शब्द रचना थी पीके मिश्रा की और संगीत एआर रहमान का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुगली पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अब आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams. And we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और यह भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके। चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
2: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests, and Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country, in the district and block levels and Gram Panchayat levels, with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous training of the next. They are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
2: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for, and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra, as the KVKs, ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendra, as Prime Minister, Primary Agricultural Cooperative Society and State District, Gram Panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, this promise never loses its importance.
1: बिल्कुल, तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार।

0: Bengal and its people, strong public opinion emerged demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहां का साहित्य, वहां की कला, वहां की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
0: Absolutely, Siddharth, this is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government which will be a government of double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers, it's not just the money that is going to the farmers, it is also fertilizers, it is also the good quality of seeds, it is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमान अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्रीस्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं, इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एग्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
0: एब्सोल्युटली एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी एंड आई वॉन्ट टू से दैट इट वॉन्ट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
1: Bilkul Vikasit Bharat ki baat aapne ki hai aur ek sarkar ki ek jo nayi pehal hai desh mein jis tarah se cooperative societies ka निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉइल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो, आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, द वर्ड दैट यू यूज्ड एंड यू हैड यूज्ड दिस वर्ड अर्लियर एज वेल व्हिच इज सशक्त बनाना, that is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question, and that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world, but he knows and he trusts the government, and then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap aatmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paaye, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India Mission, you can be a part of the banking system, of the financial system, you can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing flying in the air?
1: Even इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो. और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं, 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है. और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं.

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि
1: नरेंद्र
0: माननीय
1: मोदी जी
0: प्रधानमंत्री जी का
1: हमारे
0: मंच
1: देश में
0: पर
1: उपस्थित हैं
0: आगमन
1: और
0: हो
1: हम
0: रहा
1: उनका
0: है और
1: हार्दिक
0: वो
1: स्वागत
0: मंच पर
1: और
0: पहुंच
1: अभिनंदन
0: गए हैं,
1: करते हैं।
0: और चारों
1: वंचित
0: तरफ
1: बहुजन
0: से
1: दिवस मनाने के
0: ये लोगों की
1: अलावा आज
0: आवाजें
1: माननीय
0: उनको अभिवादन करते
1: प्रधानमंत्री
0: हुए,
1: श्री नरेंद्र
0: उनका
1: मोदी जी
0: स्वागत करते हुए
1: विभिन्न
0: लोग यहाँ पर
1: मंत्रालय
0: खड़े
1: की
0: हुए
1: कई
0: हैं, और
1: परियोजनाओं
0: माननीय
1: का
0: प्रधानमंत्री महोदय
1: शुभारंभ,
0: ने अपना
1: उद्घाटन
0: स्थान ग्रहण
1: तथा
0: कर लिया है
1: राष्ट्र
0: और
1: को समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage, sitting along with the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Sri Suvendu Adhikari. People craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: करती हूँ कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: Ji haan, Pradhan Mantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
3: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आरएन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल रोड कृषि मछली पालन इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी, और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई, सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष का शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां

0: इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधामोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं। देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं और मेरे किसान भाई बहन, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है, हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूं। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5:33 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए, सबसे पहले हम सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म लक्से।

जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आप सुन रहे थे फिल्म दिल चाहता है से। आवाज़ें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। संगीत था शंकर एहसान लॉय का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में। गुलजार की शब्द रचना, शंकर एहसान लॉय का संगीत और फिल्म का नाम है बंटी और बबली।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड

0: Waves OTT app now and watch for free.
1: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
8: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के रायरंगपुर जिले के दांड बोस में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक भव्य सार्वजनिक समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर ओडिशा की जनता के लिए 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन

0: एफडीसी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लिया गया है। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अल्प प्रवास पर मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे और विश्व प्रसिद्ध श्री पीताम्बरा पीठ में मां बगलामुखी के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने देश एवं प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की और मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य, गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल श्री कृष्णा मालीवाड़ एवं साथी मांडू द्वारा भील जनजातीय भागोरिया नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। नमस्कार श्रोताओं, फिल्म संगीत लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश के मौसम की तो बात ही निराली है दोस्तों, है ना। श्रोताओं, बारिश लगभग हर जिले में पहुंच चुकी है और जहां नहीं पहुंची है वहां भी बस पहुंचने ही वाली है। तो श्रोताओं, क्यों ना इस बारिश के मौसम का लुत्फ उठाया जाए और सेलिब्रेट किया जाए इस त्यौहार को। तो आइए इसी उपलक्ष्य में हम सुनते हैं ये गीत जो हमने लिया है फिल्म लगान से।

उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान, किशोरी गोवारीकर और साथियों की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म लगान से। जावेद अख्तर के लिखे बोल और संगीत था AR रहमान का। श्रोताओं, आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुरु से। श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज़ें हैं। गुलजार की शब्द रचना और संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने।

फिल्म बागी का गीत अभी आप सुन रहे थे, मीत ब्रोज और मोनाली ठाकुर की आवाज़ों में। कुमार के लिखे बोलों को संगीत दिया था मीत ब्रोज ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म नमक हलाल से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, अनजान के लिखे बोल और बप्पी लहरी का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म चुपके चुपके से, आनंद बख्शी के बोल और एस डी बर्मन का संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए अब यह अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म छलिया से। मुकेश की आवाज़, बोल लेके हैं कमर जलालाबादी ने और संगीत बद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

संतोष आनंद का लिखा गीत सुनिए फिल्म प्यासा सावन से। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ें हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म मंजिल का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। योगेश के लिखे इस गीत को संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं ये गीत फिल्म अजनबी से। आनंद बख्शी के लिखे बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और इस गीत में आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत दिया SD बर्मन ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला गीत आइए अब सुनते हैं। यह है फिल्म लोफर से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत हम सुनेंगे, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोता, मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट।
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।

0: खुशखबरी। जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार के पूर्वोत्तर दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
2: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों ने योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथूला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। जत्थे में दो संपर्क अधिकारियों और एक चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि 8 सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:35 पर। कार्यक्रम चित्र भारती का प्रसारण 9:30 पर किया जाएगा और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विवेक करमाहे का ठुमरी और दादरा गायन रात्रि 10:00। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी रविवार 21 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, कल सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। सुबह 11:40 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 7:20 और सुबह 10:30 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे अनीता यादव के गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिए सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम सामुदायिक गायन शिक्षण पाठ। श्रोताओं, सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा।

फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का प्रसारण सुबह 11 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का तीसरा भाग आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 बजे सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 12:15, दोपहर 2 बजे, शाम 5:33 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की होगी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग विशेषज्ञ सपना अग्रवाल से सुनीता सिंह की बातचीत और शाम 6:30 से आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य मैनचेस्टर में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। और रात्रि 8 बजे सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वन्य जीवन। श्रोताओं, ये थे कल यानी 21 जून 2026 रविवार को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ
2: जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सूनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 9,44,00,000 से किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। इंदौर में 2,935 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का हुआ भूमि पूजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में होंगी शामिल। और भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बार पश्चिम बंगाल दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज भाजपा सरकार में विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है।
6: सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी।
5: इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरांग में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी आबादी द्वारा दशकों से झेली जा रही अभावग्रस्तता की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और सामाजिक उन्नति के नए अवसर मिल रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सावेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकास का पर्याय बनेगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को व्यापक लाभ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से मेट्रोपोलिटन रीजन के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में दूध, फल और सब्जियां लेकर मोटरसाइकिल से परिवहन करने वाले किसानों के लिए हेलमेट वितरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
7: मोटरसाइकिल से दूध, फल, सब्जी लेकर के गांव से जो किसान निकलते हैं, उनकी जिंदगी की कीमत भी होना चाहिए। इसलिए हमने अभियान चालू करने का निर्णय लिया है कि हम हेलमेट का अभियान चलाएंगे। हेलमेट से व्यक्ति की जान भी सुरक्षित रहती है। प्रतीकात्मक रूप से इंदौर प्रशासन द्वारा कुछ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा ताकि हमारे लोगों की जान भी बचे। सुना चाहिए कि उनका आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा।
5: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। यह परियोजना माँ छिप्रा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन के बाड़ी में आयोजित प्रदेश स्तरीय जन कल्याण शिविर में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री चौहान ने भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने राज्य के किसानों के लिए मूंग खरीदी की औपचारिक स्वीकृति और कम बारिश की आशंका के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार के साझा कंटिजेंसी प्लान का ऐलान किया।
8: भारत सरकार से मूंग खरीदी की अनुमति मांगी है
3: और आज ही बाड़ी की इस पवित्र धरती से मूंग खरीदी की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार को दी जाएगी ताकि किसान भाई अपने मूंग को बेच सके। ये मूंग अपनी तीसरी फसल है और इसलिए मूंग किसान की मेहनत है, उस मेहनत के पूरे दाम दिए जाएंगे, किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी।
5: नीट यूजी पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। जबलपुर जिले में परीक्षा के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,426 परीक्षार्थी शामिल होंगे। समाचार में अब वक्त एक छोटे से विराम का।
8: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
5: समाचारों में पुनः स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। यह विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। समारोह सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। योग दिवस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में जानकारी देंगे।
9: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है।
5: केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सकीय औचित्य नहीं और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। प्रदेश में मानसून 25 जून के आसपास प्रवेश कर सकता है। फिलहाल प्री मानसून गतिविधियों के चलते मौसम में बदलाव बना हुआ है और आज भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने आज सीहोर और आगरमालवा जिले समेत 38 जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं रीवा, सतना, मऊगंज, सिथी, सिंगरौली, मैयर, उमरिया, शहडोल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार और खरगोन जिलों में तेज धूप और उमस बने रहने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य, गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर बीते 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। झाबुआ में 5 और 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के

बायोमेट्रिक अपडेट के लिए स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आगरमालवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कल मास्टर वॉलंटियर्स को जिला स्तरीय नशा मुक्ति जन जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया। और झाबुआ कलेक्टर ने जिले में खुले और अनुपयोगी बोरवेलों से बच्चों और पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जय जवान। जय जवान जय किसान।
1: जय जवान जय किसान। चौपाल में बैठे और चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भैयान को
0: धर्म
1: रेणु राजा की और हमारे संग बैठे हैं धर्म भैया, सो धर्म भैया की राम राम।
0: राम राम रेणु राज बहन, राम राम राम राम। और कैसी हैं आप बहना?
1: बिल्कुल बढ़िया है भैया। देखो खेती किसानी की अब तैयारी कर रहे हैं, है खरीफ फसलन की भैया। बिलब अब बोने बोने जैसी पानी बरस जाए, बरसात हो जाए अच्छी, तो बाकी बात अब जी सब अपन को काम काज करने हैं खेती किसानी को।
0: बिल्कुल सही कह रही हो बहना। इस समय हमारे किसान भैया इस समय इंतजार में कि अच्छो सो पानी बरस जाए, यानी कि इतेक पानी बरस जाए कि हमारे खेतों में अच्छे से नमी आ जाए। और नमी आ जाएगी खेत में, अच्छे से मिट्टी पानी को जल स्रोत को अपय शोषण कर लेगी, मतलब तो उससे क्या होगा कि भैया हो अपय जल से मिट्टी में नमी रहवे से अपई अच्छी बुवाई होगी।
1: बिल्कुल भैया।
0: और बुवाई होवे में अपन को दो पेटी वाली सीड ड्रिल को उपयोग करने हैं।
1: हाँ भैया,
0: है ना,
1: तो एक में खाद एक में बीज है।
0: हाँ, तो इसमें अपन को दो पेटी वालों सीड ड्रिल में क्या होगा कि एक में खाद एक में बीज बताई ना, तो उसमें क्या अपन कतार से कतार में बोनी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे धर्म भैया।
0: कतार से कतार में बोनी होवे से एक तो क्या होगा कि अपनी लाइन बनी रहेगी और बीच में जो जगह छूटेगी ना, वो अपने खरपतवार जो उगे वो बाय अपन निंदाई गुड़ाई उखाड़बे में अपन लाने सहूलियत रहते हैं।
1: बिल्कुल भैया सही कह रहे। और भैया देखो अब कछु चर्चा कर ले अपन प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पे।
0: हाँ भैया, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना यानी कि मुफ्त योजना है ये।
1: बिल्कुल भैया, है ना, है
0: कि भारत सरकार की जो बहुत बड़ी पहल है जी।
1: हाँ बिल्कुल भैया, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है जाको उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरन के लाने उनकी छत पे
0: हाँ मुफ्त बिजली प्रदान कर हुए है।
1: हाँ, जो सोलर जो पैनल लगेंगे वहाँ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करवो है। जा योजना के तमाम लाभ है भैया और जा की विशेषताएं भी है।
0: देखो जा में बिजली तो मुफ्त मिल ही रही है और जा के अतिरिक्त बिजली की जो ग्रिड बेच कर अपन कमाई भी कर सकते हैं, क्योंकि जा में अपन बिजली उतने जला नहीं पाते।
1: हाँ।
0: और वो बच जाती यूनिट तो वो अपन है ना अपाई बाप बिल में आगे के लाने भविष्य में काम में आ जाते, यानी बेच सकत वो अपाई बिजली।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो और जा में सब्सिडी को भी मतलब प्रावधान है।
1: हाँ भैया,
0: सोलर पैनल लगवाने से शुरुआती खर्च पर सरकार द्वारा बामे भारी सब्सिडी प्रदान करी जाऊ थे।
1: बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं।
0: 1 किलो वाट तक 30,000 और 2 किलो वाट पर भैया अपाई लाने 60,000 और उसके बाद
1: 3 किलो वाट
0: हाँ फिर तो भैया अपन को 78,000 की सब्सिडी दी जाऊ थे। और उसके बाद अपाई भैयान खो जामे कितनी एक अच्छी सुविधा मिल रही है कि बैंक से भी फाइनेंस हो जाओ।
1: बिल्कुल भैया आप सही कह रहे हैं।
0: तो किस्तन में अपन पैसा दे सकते हैं, है ना
1: भैया, रुपया पैसा
0: हाँ इकट्ठे नहीं है तो भैया बैंक से अपन फाइनेंस करा लेंगे।
1: हाँ।
0: और अपन जो महीना को बिजली को बिल भर रहे थे ना।
1: हाँ।
0: तो वो अपन समझेंगे किस्त भर रहे हैं, ठीक है। और भैया वो किस्त जब तक बैंक को कर्जा पट जाएगो तो अपन लाने बिल्कुल बिजली मुफ्त चलेगी।
1: बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं। और जहाँ में जो कछु दस्तावेज लगत है वे तो अपन जानते ही हैं, मैं भैया जानते ही हैं। एक आधार कार्ड लगत है, बैंक खाता विवरण लगत है, जो खाता आधार जो है वो लिंक होना चाहिए।
0: हाँ
1: है, और बिजली को बिल लगत है और मोबाइल नंबर।
0: मोबाइल नंबर वो ही दें जो बैंक में भैया अपाओ अपडेट हो।
1: हाँ, और भैया संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी लगत है।
0: बस भैया तो जी अपाई लाने कागज लगत है
1: जरूर उठाए भैया।
0: और भैया जा में अपाओ घर को मासिक बिल बिल्कुल शून्य हो जाओ थे।
1: बिल्कुल भैया आप सही कह रहे हैं।
0: तो भैया हाँ। जा अपनी योजना को लाभ लेंगे तो अपने लाने लाभ ही लाभ होगो। और भैया जा सिस्टम को अपन जरूर लगवा लें। और भैया जा में सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण अपा शुद्ध रहते हैं।
1: बिल्कुल भैया,
0: यानी पर्यावरण यानी स्वच्छ ऊर्जा को उपयोग होवे से जो कार्बन उत्सर्जन में कमी आउत है।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो इसलिए भैया अपन जा पैनल को जरूर लें और लगवा लें, जिससे कि भविष्य में आवे वाले समय में हमें बिजली की बिल देवे की बिल्कुल भी परेशानी नहीं आवेगी।
1: बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं। और भैया अब बात कर रहे थे
0: नहीं, अब भैयान से अपन पहले बात करवे से पहले अपन सुन लें जो संदेश।
1: हाँ भैया,
2: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री। 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: तो भैया अब अपन ने ये संदेश सुने,
0: अब भैया इनसे बात अपन कर रहे हैं कि भैया देखो अपन जे देख रहे हैं कि अपन जल स्रोत
1: हाँ,
0: है ना
1: हाँ।
0: प्रदूषित होवे से बचाने हैं अपन को।
1: बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं आप, के जो अपन देख रहे हैं कि अपने जो ताल तलैया
0: हाँ,
1: कुआ है,
0: बावड़ी
1: है,
0: भैया
1: और भैया अपने तो अपन देख रहे हैं जो डैम है वो, जैसे अपन पानी पी रहे हैं
0: हाँ, तो
1: गंदो करवे से नहीं छोड़ रहे हैं।
0: तो भैया हम यही कहेंगे कि अपन को अपने जल स्रोतों को बिल्कुल प्रदूषित होवे से बचावे से का होगो कि अपन जो पानी पियत हैं वो स्वच्छ पियत हैं।
1: बिल्कुल भैया, और जाके अलावा एक बात जो है कि देखो अबे का है कि बरसात के अबे भाई नहीं है
0: तो बरसात होवे से पहले
1: हाँ साफ सफाई कर ले
0: उनकी भैया, गहरीकरण कर ले, उसकी मिट्टी जो निकले वो अपने खेतन में डाल लें, जिससे कि वो बहुत ही भैया अपनी जो मिट्टी है ना वो जैविक खाद के रूप में काम करेगी।
1: बिल्कुल भैया हाँ, सही कह रहे,
0: क्योंकि वो मिट्टी में कीड़े मकोड़े पानी में वो गल के बिल्कुल ऐसी खाद सी बन जाते हैं मिट्टी की, बहुत अपे लाने अपे खेत की मिट्टी में अपन मिलके बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी और जो अपा उत्पादन होगा वो बहुत ही अच्छो होगा।
1: बिल्कुल भैया आप सही कह रहे हैं, और भैया देखो एक अपने का परंपरा है कि घर की जो पूजा पाठ के जो फूल भभूत राख जो हवन की है
0: वो सब पानी में डाल देते
1: हैं, सुबह में जा रहे हैं सराय में जा रहे हैं, तो भैया जो एक तरीका बहुत गलत है।
0: हाँ जी भैया, ऐसा नहीं करने अपने जल स्रोतों में अपन को ऐसी सब चीजें नहीं डालनी है।
1: हाँ, घर में जो मूर्ति भाई भी खंडित भाई उन्हें डाले आए
0: हैं,
1: को तस्वीर खराब भाई भगवान की सुबह सब पानी में डाले आए,
0: पानी में सरायात है, तो भैया ऐसा नहीं करने, अपन को बचा के पानी के जल स्रोतों को भैया सुरक्षित और साफ स्वच्छ रखने हैं, और साफ स्वच्छ रखेंगे तभी हम अपने जल स्रोतों को बचा पाएंगे,
1: है ना। आप सही कह रहे हैं।
0: तो बहना अब अपने चौपाल कार्यक्रम को समय समाप्त हो रहा है, तो सब भैया बहनन काजे धर्मू और
1: रेणु राजा
0: की राम राम, राम, राम जय जवान, जवान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: जय जवान जय किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनवे बारे सभी भैया बहनों को धर्मू की राम राम, और संग में बैठी रेणु राजा बहन आपको भी हमारी राम राम।
5: धर्मू भैया आपको भी हमारी राम राम, और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया को हमारी राम राम पहुंचे।
4: तो भैया आओ देखो, आज हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे देखो कोई ना कोई नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं, नई नई जानकारी लाते हैं हम भैयन को, और नई नई जानकारियन के साथ हमारे भैया चौपाल पे बैठे सुनते हैं और बाको लाभ लेते हैं। तो भैया हमारे कार्यक्रम को यही उद्देश्य है कि हम बिल्कुल ऐसे ऐसे जगह पे पहुंचे ये कार्यक्रम, और ऐसी ऐसी जगह तक लोग सुने जिससे कि उन्हें जिस चीज की जरूरत है उन्हें वो लाभ मिल सके।
5: बिल्कुल भैया।
4: तो भैया आज हम जिन बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में।
5: बिल्कुल भैया,
4: है ना।
5: हाँ।
4: और ये सम्मान निधि योजना भैया एक भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है
5: भैया, जो एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है।
4: हाँ।
5: जाके तहत देश के सभी पात्र जो भूमि धारक किसान है उनको हर साल 6000 रुपया की आर्थिक सहायता
4: दई जाऊत है,
5: जो कि 2000 रुपया की 3 मासिक किस्तन में सीधे से उनके बैंक खाते के माध्यम से उनके पास पहुंचते।
4: हर 3 महीना 4 महीना में भैया 3 किस्तों में आउत है, 2000 रुपया मिलत है।
5: हाँ।
4: तो 4 महीना में अपन को 2000 आ गए, फिर 4 महीना में 2000 आ गए, और फिर 4 महीना में 2000 आ गए, ऐसे यानी कि अपन को 6000 रुपया पूरे साल भर में मिल जाऊत है बैंक के द्वारा। यानी अपन को किसी के चक्कर नहीं लगाने,
5: जैसे भैया एक लाभ जो भी है कि कछु को जरूरत हो।
4: हाँ, तो वही तो
5: अपने खेती किसानी को जरूरत।
4: हाँ, तो वो छोटे छोटे जो सीमांत किसान भैया है ना, छोटे छोटे 1 बीघा 2 बीघा एकड़ भर जमीन है जिन पे, तो वो अपाई जा में आवेदन कर सकते हैं।
5: हाँ।
4: और आवेदन करवे के लाने अपन भूमि की जो भी अपने पास जो कागजात होते हैं वो लगा दें, अपन आधार लगा दें, वोटर कार्ड लगा दें, और बैंक की अपाई वो लगा दें पासबुक की।
5: भैया जो लाभार्थी वे होते हैं वे सभी किसान परिवार हैं जिनके पास एक तो खेती के लाने भूमि है, और जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी आय बढ़ा हुआ है, जैसे वे कृषि संबंधी और अन्य जो उनके दैनिक जरूरतन के लाने खर्चा है तो उनको वे कम रुपये पैसा नहीं है तो वे जे रुपये से प्रबंध कर सके।
4: हाँ, तो भैया बैंक में पैसा आ जाओ थे।
5: हाँ।
4: और बैंक में पैसा आ जाओ तो जब अपन को जरूरत पड़ा थे तब अपन निकाल सकते हैं और अपन काम कर सकते हैं।
5: बिल्कुल भैया।
4: तो जोन भैया ने अगर जा योजना में अपाओ आवेदन नहीं दो है, आवेदन नहीं करो है और रह गए हैं।
5: हाँ।
4: तो भैया जा में आवेदन कर सकते हैं।
5: बिल्कुल भैया।
4: और जा योजना को लाभ भरपूर ले सकते हैं।
5: बिल्कुल भैया।
4: और अब भैया को 23वीं किस्त जारी हो रही है जय जून में भैया, तो भारत सरकार द्वारा 23वीं किस्त अपन जारी कर रहे हैं जून में। तो भैया जा में अपन भैया को 2000 रुपया फिर से आवे वाले हैं।
5: बिल्कुल भैया। और जाके लाने भैया योजना को लाभ उठावे के लाने केवाईसी पूरा करवो भी।
4: हाँ, तो वो हमने बताई ना कि जा में जो कागजात अपन जमीन के और वो रकबा जो भी कछु है बाकी कागजात है ना, खतरा खसौनी वो लगाने हैं, अपने आधार लगाने हैं, बैंक की अपाई वो लगानी है, पासबुक की पूरी फोटो कॉपी।
5: हाँ भैया, आपको कहने का मतलब जो है कि बैंक के खाते को आधार से लिंक होना चाहिए,
4: अपाओ मोबाइल अपाओ बा में लिंक कराए मोबाइल अपाई है ना बैंक में, वो सब चीजें अपने को भैया आवेदन में करनी है, और उसके बाद अपन जाके हकदार हो जाएंगे जा योजना के।
5: बिल्कुल भैया।
4: और जब जा योजना के हकदार हो जावेंगे तो भैयाओ फिर अपाई लाने पैसा आन लगेंगे।
5: बिल्कुल भैया सही,
4: तो भैयाओ हर 4 महीना में 2,000 रुपया, क्योंकि ये छोटे गरीब किसान भैया हैं, जो सीमांत किसान है, छोटी जमीन है, उनके लाने 2,000 रुपया हर 4 महीना में बहुत काम आउट हैं।
5: बिल्कुल भैया, और अब हम सोच रहे हैं कि आप अपने किसान मन में इनके लाने एक जो भेंटवार्ता सुनवा दें। ईगो विषय है खरीफ फसलों की बोनी से पूर्व सामयिकार, वार्ताकार है श्री लक्ष्मी नारायण चौरसिया, उनसे बता रहे अपन भैया समर्थ अग्रवाल।
4: हाँ तो बहना सुना थे जो भेंट वार्ता।
5: हाँ भैया।
0: किसान भाइयों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं धीरे धीरे मानसून का प्रवेश हमारे अंचल में होगा, समूचे मध्य प्रदेश में होगा और पूरे देश में धीरे धीरे मानसून फैल जाएगा। मानसून का जब आगमन हो जाएगा तो पूरे देश में खरीफ फसलों की बात की जाएगी और खरीफ फसलों में ज्वार है, मक्का है, सोयाबीन है, तमाम सारी फसलें होंगी इस वक्त। तो हमें खरीफ फसलों की बोनी से पूर्व सामयिक कार्य, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहायक संचालक श्री लक्ष्मी नारायण चौरसिया जी हैं, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के। वर्तमान में आप प्राचार्य हैं कृषक प्रशिक्षण केंद्र पर, और सभी सुनने वालों के मध्य हम आपका स्वागत करते हैं। सर आपको प्रणाम।
6: नमस्कार सर।
0: जैसा कि विषय है चौरसिया जी, खरीफ फसलों की बोनी से पूर्व सामयिक कार्य, ये तो तय है कि कुछ दिनों में मानसून आ जाएगा और मानसून आते ही किसान को अपने खेत में काम करने होंगे, लेकिन कोई भी काम अगर हम आरंभ करें उससे पहले कई तैयारियां करनी पड़ती हैं, घर में भी तैयारी करनी पड़ती हैं तो खेती में भी तैयारी करनी होगी। तो हमारे किसानों को आप सलाह के तौर पर बताएं कि उन्हें अभी से क्या क्या प्रिपरेशन तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि जैसे ही मानसून आए वो अपनी बुवाई आरम्भ कर सके।
6: किसान भाइयों, सबसे पहले हम जिन फसलों का खरीफ की बोने के लिए चयन कर रहे हैं, जिन फसलों को हम खरीफ में बोएंगे उनको वो बोनी के पूर्व सबसे पहले हम खेत की तैयारी करेंगे, और खेत की तैयारी में ये हम देख लेंगे हम कि हमारा खेत भुरभुरा होना चाहिए और उसमें जो पची हुई हमारी गोबर की खाद है और किसान भाइयों खेत में उस खाद को हम मिलाएंगे, और जैसी अवस्था में हमारे किसान भाइयों खाद ले जाते हैं तो वो उसमें पचपचापन जो रहता है, नमी रहती, मॉइस्चर रहता है, उस खेत को खेत में हम सीधे उसके मिला करके अगर हम जुताई करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे तो FYM में जो गोबर की खाद में, सड़ी हुई गोबर खाद में जो पोषक तत्व होते हैं वो पूरी मात्रा में हमारे प्राप्त होंगे और हमारी फसलों को बहुत अच्छा उत्पादन में वो बहुत सहायक होते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम बोनी की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमें उन्नत बीज की व्यवस्था करनी है। उन्नत बीज के लिए किसान भाई सबसे पहले हमारे यहाँ जिन फसलों के हम बोनी कर रहे हैं उनके जो अच्छी गुणवत्ता वाली अत्यधिक उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं वो खरीफ की फसलों में सोयाबीन है, आपका मूंगफली है, और सोयाबीन मक्का है, ज्वार है, और हमारे जो जो किसान भाई इन फसलों को हम बोनी कर रहे हैं उनके अच्छे उन्नतशील किस्मों के बीजों को उनको सबसे पहले व्यवस्था करके रखना है। तो जब हम हमारे किसान भाई किसी दुकानदार के यहाँ जाते हैं और या जहाँ से भी बीज वो क्रय करते हैं, कृपया वो उसका जर्मिनेशन देखें, उसमें कितना प्रतिशत जर्मिनेशन है और उस पर सारा नामांकन उस पर रहता है, अंकित रहता है पूरा, कितना जर्मिनेशन है और कब की पैकिंग है। साथ ही मैं किसान भाइयों को जो सलाह दूंगा कि जिन दुकानदारों से विक्रेताओं से बीज की व्यवस्था करते हैं, क्रय करते हैं, तो कृपया उससे बिल जरूर मांगें, और बिल मांगेंगे तो उसमें किस्म भी लिखी होगी, उसमें राशि भी निर्धारित होगी। हमेशा जो सही बीज है और प्रमाणित बीज है और उन्नतशील किस्म है, अगर आप रसीद मांगेंगे तो उस पर सारा विवरण होगा और बीज अच्छा क्वालिटी का आपको प्राप्त होगा। तो बीज के बाद हम देखते हैं कि हमें खरीफ की बोनी की तैयारी के पहले हमें और बार खाद की व्यवस्था भी करनी है। तो चूंकि जो फसलें हम

0: लिए और उनको रसीद प्रदान करने का विभाग का नियम है, और आप रसीद मांगेंगे तो उस पर उसका दर होगा और उसकी जो है क्वांटिटी होगी और कितने रेट में वो आपको दे रहा है, तो आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी और अच्छी गुणवत्ता का आपको उर्वरक वो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से उन्नत बीज और खाद की व्यवस्था बोने के पहले करनी है और खेत की तैयारी पूरी अच्छी तरह से करना है ताकि उसमें जो हम फसल बोएंगे उससे अधिक से अधिक उत्पादन हमको प्राप्त हो सकेगा।
1: आपने दो चीजों पर फोकस किया, बीज और खाद पर। किसी ने गहरी जुताई नहीं करी हो तो अभी वक्त है क्या वो जुताई कर सकता है?
0: हाँ, वो अभी गहरी जुताई जिन किसान भाइयों ने नहीं की है, मोल्ड वोल्ड प्लाऊ से मिट्टी पलटने वाला जो प्लाऊ है उससे हम गहरी जुताई अभी किसान भाई कर सकते हैं, और इससे करने से बहुत फायदे हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। अगर बारिश कभी कम होती है तो जो अभी बारिश स्टार्ट होगी तो जो पानी खेत में मिट्टी में समाएगा वो हमारी फसल के लिए जो है काफ़ी लंबे समय तक हमारी फसलों को बचाने में वो काम आएगा, और उसमें जो कीड़े बीमारी जो हमारी मिट्टी के अंदर उसके अंडे कीटाणुओं के इंसेक्टों के पड़े हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और हमारे खरपतवार हैं वो खेत में जो पहले से उनके जो बीज डले हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा खेत बहुत अच्छा बन जाएगा और पानी की मात्रा खेत का पानी खेत में वो हमारे उसमें समा जाएगा, वो खेत से बाहर नहीं जाएगा, तो हमारे फसलों के लिए ये बहुत काम आएगा।
1: एक चीज और है, हमें बुवाई करनी है और बुवाई के बाद अगली स्टेज के काम करने हैं, तो इसमें कृषि यंत्रों का बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, उपयोग रहता है।
0: जी हाँ,
1: तो कौन कौन से कृषि यंत्र किसान इस समय तैयार करके रखे अपने?
0: देखिए, इस समय किसान भाई हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि अगर रिज एंड बैंड जो है, रिज एंड बैंड प्लांटर है एक, वो एक कृषि उपकरण है जिसके माध्यम से रिज एंड बैंड बनाने में उसका उपयोग किया जाता है, यानी खेत के अंदर 9 इंच ऊंची क्यारी बनाई जाती है और क्यारी के ऊपर अगर सोयाबीन की हम बोनी करते हैं तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में, अनुसंधान केंद्रों में इसका बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। तो वहाँ पर जब हमारी बारिश होती है तो पानी जब खेत में अधिक भरता है तो उससे हमारी फसल प्रभावित नहीं होती। दूसरी बात, जब हमारी पानी की मात्रा कम हमारी प्राप्त होती है, अगर पानी बारिश कम हो जाती है तो हमारे खेत में जो पानी उस क्यारियों में पहले से अंदर मौजूद है उससे हमारी जो फसल को बचाने में बहुत सहायक होता है, तो हमें उत्पादन भी उससे अच्छा मिलता है। तो खास तौर से हम जो बेड बनाने के लिए जो कृषि उपकरण है उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जिन फसलों की हम बोनी करते हैं कतार में, तो हमारा सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जिसके माध्यम से हमें किसान भाइयों को बोनी करना उसको अच्छा माना गया है, इसमें हम उर्वरक भी डालते हैं, आगे पीछे सीड भी डालते हैं। कतार में बोनी करने से बहुत फायदा और अच्छा उत्पादन हमको मिलता है। तो हमारा कल्टीवेटर तो काम करता ही है, साथ में हमारा ये जो है बेड बनाने वाला कृषि उपकरण है वो अच्छा काम करता है। दूसरा, हमारा जो कृषि खासतौर से कृषि उपकरण हैं जो कृषि अभियांत्रिकी के माध्यम से हमको मिल जाते हैं, और कृषि अभियांत्रिकी के माध्यम से अभी किसान भाई अगर किराए पर अगर ले जा करके अपने खेतों की अगर जुताई करानी है या गहरी जुताई करानी है तो वहाँ से भी उपलब्ध हो जाते हैं, समय वो हमारे कृषि अभियांत्रिकी यहाँ से बराबर किसानों को मिल जाते हैं।
1: यानी कि इन यंत्रों का भी उसे रख रखाव अभी से तैयारी कर दे ताकि वक्त पर वो खराब ना निकले और काम अपना रुके नहीं।
0: जी,
1: शिवपुरी का जो हमारा अंचल है पूरा जिला, इसमें कौन कौन सी फसल खरीफ में विशेषकर बोई जाएंगी उसका भी जिक्र करना चाहेंगे।
0: इसमें खास तौर से मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारा करेरा जो बेल्ट है, पिछोर और करेरा, उसमें मूंगफली बहुत अच्छी अधिक मात्रा में लगाई जाती है और अच्छी किस्म का उत्पादन होता है, क्योंकि उस एरिया में जो है मूंगफली का बहुत उत्पादन अच्छा आता है, वहाँ मिल भी है और किसान इस फसल से अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। तो वहाँ देसी भी लगाते हैं और ऑयल वाली भी है, अच्छी मूंगफली का उत्पादन करते हैं। पिछली बार गुजरात के लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था करेरा में, वो पेपर में भी आया था, तो किसान भाई वहाँ पर मूंगफली का अच्छा वो काम करते हैं।
1: कहने का तात्पर्य मेरा इस जगह पर चौरसिया जी इसलिए है कि ताकि हमारे किसान को पता चल जाएगा कि उसके इलाके में कौन सी फसल का उपयोग करने से उसे फायदा ज्यादा मिलेगा।
0: जी हाँ, और दूसरा हमारी सोयाबीन की फसल है, तो बहुतायत मात्रा में हमारे यहाँ सोयाबीन को भी हमारे किसान भाई लगाते हैं और उसमें अच्छी किस्में आई हैं जो कम समय में अधिक अच्छा उत्पादन दे देती हैं। और सिंचित अगर एरिया है तो सिंचित एरिया में इस समय अपनी बोनी इस समय वो प्रारंभ कर सकते हैं, और जो सिंचित नहीं है वो वर्षा पर आधारित है, वो हमारी बारिश शुरू होने पर ही उनकी बोनी की जाएगी। तो सोयाबीन की हमारा मेन फसल तो सिपरी में मूंगफली

0: कि हमारा एरिया काफ़ी अच्छा है, और उसके बाद हमारी सोयाबीन आती है, और उसके बाद अन्य फसलें हमारी शिवपुरी जिले में बहुत मात्रा में लगाई जाती है।
1: कभी कभी किसान किसी लापरवाही के कारण या अपनी व्यस्तता के कारण, कोई पारिवारिक समस्या के कारण अपनी फसल को समय पर जिस समय बोनी चाहिए उस समय नहीं बो पाता, तब वो उसके बाद जो होता है उसे पिछैती फसल कहते हैं।
0: जी हाँ।
1: तो पिछैती फसल अगर वो बोएगा तब उसे कौन कौन सी बातों का और ध्यान रखना होगा?
0: इसमें मैं खास तौर से किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जो जिनका समय जुलाई से पूर्व है उनकी हम बोनी करते हैं, और समय पर बोनी के वाली किस्में हैं उनका समय अलग है, और जो अगेती और पछेती दोनों प्रकार की हमारी किस्में हैं इसमें, तो अगर ऐसा हमारा किसान भाई किसी कारण बस बोनी नहीं कर पाया है तो हमारी जो पछेती जो किस्म है कम समय में आती है, और बाद में बोनी करने के लिए कृषि जो अनुसंधान केंद्रों से रिकमेंडेड जो फसलें हैं वो पछेती के रूप में उनकी किस्में हैं, उन किस्मों का बोनी करके किसान भाई उसका लाभ ले सकते हैं, उनका समय कम रहता है।
1: कम समय रहता है मतलब वो उनका बीज बोने से लेकर प्रोडक्शन आने का अंतराल कम आए, वो जल्दी उग जाती हैं और वनस्पत अन्य बीज की फसलों के।
0: हाँ बस ये है।
1: धीरे धीरे खरीफ की फसलों का समय आ रहा है चौरसिया जी, किसी विशेष बात का उल्लेख करना चाहेंगे?
0: इसमें खास बात हम किसान भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे ये हमारे खाद और बीज की व्यवस्था तो हो गई है, खरपतवार नियंत्रण पर हमारे किसान भाई विशेष ध्यान रखें, और दूसरा जो हमारे कल्चर्स हैं विभिन्न प्रकार के इन फसलों में उपयोग किए जाते हैं उन कल्चर्स का भी हमारे किसान भाई इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ जो हमारे भूमि का उपचार है, जैसे कई फसलों में हमारे भूमि को भी उपचारित करने की आवश्यकता है, तो भूमि उपचारित करने वाले हमारे जो दवाइयां हैं उसको भूमि उपचारित कर करके जरूर बोएं, और इस तरह से अगर कृषि कार्यमाला के अनुसार हमारे किसान भाई अपने फसल को बोनी करते हैं तो निश्चित रूप से उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, अच्छा उनको इनकम प्राप्त होगा।
1: जी बहुत गंभीर और बहुत दिल को लगने वाली बात बताई, दिल को अच्छी लगने वाली बात बताई, और किसानों लंबा अनुभव है चौरसिया जी के पास और सहायक संचालक के पद पर कार्यरत हैं, और खरीफ फसलों की बोनी से पूर्व सामयिक कार्य इस विषय पर हमने बहुत अच्छी बातचीत सर से की। उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत आपको लाभ देगी, और जैसे ही खरीफ फसल हमारी स्टार्ट होगी तो आप इस सब बातों को सुनकर अपनी फसल में त्वरित काम कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। चौरसिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद सर, नमस्कार।
2: भैया अब अपन सुन रहे थे जो भेंटवार्ता जाको विषय है तो खरीफ फसलों की बोनी से पूर्व सामयिक कार्य, और जाकी जानकारी दे रहे थे श्री लक्ष्मी नारायण चौरसिया जी, और इनसे बातचीत करी थी हमारे भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल जी ने। तो भैया आज जोन जोन भैया ने जो जानकारी सुनी होगी तो उन्हें भैया खरीफ फसलों से बोनी से पूर्व का कार्य करने हैं कितने अच्छी और विस्तार से उनने जानकारी दी है, तो भैया ने आप समझ लो होगो कि हम रोजीना ऐसे विषयों पर जानकारी देवाऊत हैं जिनसे हमारे भैया को अच्छे से बढ़िया से उनके कार्यों में मतलब सुविधा मिलत है, लाभ मिलत है उन्हें। तो भैया हमारी तो जो ही कोशिश रहते हैं कि भैया को लाभ मिले, और भैया अब हम आपसे बात करें तो भैया देखो हम भूमि में अपनी उर्वरक क्षमता बढ़ाएं, है ना
3: भैया? देखो का है
2: क्योंकि
3: अपन ने जो भेंट वार्ता सुनी तो जामे जो ही थी कि खेती किसानी से संबंधित ही थी।
2: हाँ।
3: तो अपन जो ही चाह रहे हैं कि भैया की खेती अच्छी हुए तो जाके लाना है जो वर्मी कंपोस्ट है बासे में भूमि की अपने उर्वरा शक्ति बढ़ाए।
2: बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि क्या है कि आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बिल्कुल खत्म हो जा रही है, वो क्यों? क्योंकि
3: हाँ
2: डाल दो तो पहले तो हमें उत्पादन खूब मिलो अच्छो मिलो, है ना? अब भैया भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी जो पोषक तत्व थे वो नष्ट हो जा रहे हैं, धीरे धीरे कमजोर हो जा रहे हैं, तो भैया को अब वो जो मिलना चाहिए उत्पादन वो नहीं मिल पा रहा है। तो अब हमको पुरानी रीति पे आने हैं, जैविक खादन को उपयोग करें, है ना? है ना? तो उससे क्या होगा भैया कि अपनी जो क्षमता है ना भूमि की उर्वरक क्षमता वो बढ़ेगी, उससे अपना उत्पादन बढ़ेगा।
3: बिल्कुल भैया, तो वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ खाद भी अपन कहते हैं,
2: हाँ,
3: जो एक अच्छा जैविक खाद है जो गोबर और रसोई के कचरा से केचुअन द्वारा विघटित करके बनाई जाती है।
2: बिल्कुल सही बात है,
3: जहां मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ के भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं।
2: और बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं भैया, और जाके बढ़वे से हमारे उत्पादन में भी बढ़ेगी और हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ेगी।
3: बिल्कुल भैया,
2: और
3: जैसे मिट्टी की जो संरचना है वहाँ में सुधार होता है,
2: हाँ,
3: है मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ाते
2: हैं वो भी बढ़ाते हैं
3: और वायु संचार बढ़ाते हैं। जैसे भैया कहा होते कि वह खेत में जो फसल लगाते हैं तो बाकी जो पौधा है बाकी जड़न में विकास तेजी से होते हैं।
2: हाँ,
3: और पोषक तत्व की भैया जामे भरमार है ही, जामे कैल्शियम मैग्नीशियम लोहा और जस्ता जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं।
2: तो भैया अब आप समझ गए होंगे कि जामे कौन कौन से पोषक तत्व जामे शामिल हैं। तो बर्मी कंपोस्ट खाद को भैया अपन उपयोग करें, और उपयोग करके अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं।
3: बिल्कुल भैया, और फसल सुरक्षा भी देते हैं जो,
2: हाँ,
3: जो भूमि में हानिकारक कीड़ा और रोगन को कम करवे में भी मदद करते
2: तो भैया जो पुराने जमाने में हमारे जो दादा परदादा बाबा करत थे खेती, हाँ, तो वो ही प्रचलन में अपन को आने हैं।
3: बिल्कुल भैया, और सामान्य फसलन में जो 250 किलोग्राम से 300 किलोग्राम प्रति एकड़ 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ तक लग जाते हैं।
2: हाँ,
3: तो बहुत अच्छी चीज है भैया।
2: तो भैया अब आप समझ रहे होंगे कि देखो हमें अपने पुरानी रीति रिवाजों पे आने, हमें जैविक खाद बर्मी कंपोस्ट खाद
3: केचुआ खाद
2: इनको उपयोग करें,
3: हाँ,
2: और इनके उपयोग करवे से अपनी भूमि
3: की उपजाऊ ताकत है वो अपन को
2: बढ़ाने
3: अपन को अच्छे उत्पादन मिले
2: वो। तो
3: भैया
2: रोक दे भैया, अब
3: मनोरंजन करवाए,
2: हाँ अपने भैया को मनोरंजन करवाए दो, प्यारों से लोग गीत सुनो। हम अपने भैया को प्यारों से लोकगीत लाए हैं, जाए अपने गा रहे हैं देवकी नंदन केवट और साथी मोरी नैया करो बेड़ा पार।
3: अरे भैया।

0: ध्रुव भैया जो तो आपने बहुत अच्छा लोकगीत सुनवाया,
1: हाँ
0: और
1: बहना, अब अपन जो किसान वाणी कार्यक्रम को समय बिल्कुल समाप्त हो रहा हो, तो सब भैया बहन का जय धर्मु और
0: रेणु राजा की राम
1: राम
0: राम,
1: राम, जय
0: जय
1: जवान
0: जवान
1: जय
0: जय
1: किसान।
0: किसान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं। क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
3: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले

0: समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने 4 जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग हैं उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्ग का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत स्वागत कार्यक्रम।
2: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
2: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए 2-3 चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो 2 चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी, जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए, जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई है
1: जी।
2: तो इस तरह की जो योजना, और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल

0: सस्ती किश्तों पर, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेके पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती है क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इंपॉर्टेंट सशक्तिकरण का,
0: ये बहुत, हाँ, सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते, अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि NDA खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं, तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता
0: है। अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है, तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं LPG, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर
1: बिल्कुल
0: किया। और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपने खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, IT से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी, 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है MBBS की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे, ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं।

0: क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है। ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों,
0: खेलो इंडिया वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उन पे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं, वो सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो ITI हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है ITI करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए हैं, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ITI है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहाँ कहाँ प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहाँ पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहाँ फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था। अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ गैप है, कहाँ क्या डिमांड है, दे सकते हैं। तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको BA करना है, फिर 2 साल PG करना है, फिर MPhil करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता। तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो क्या होता है मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स भी अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो नहीं। सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो अब बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है, 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है। वो तो वो एक अवसर, और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप
0: इंडिया द्वारा कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, इसमें और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ

0: प्रोजेक्ट जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं। पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो है वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि इधर खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती। या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको कोई अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, तीन इंस्टॉलमेंट में
0: 2,000 के, 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना होता है, बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रिवॉल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10-12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही
0: हैं, तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है। और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी भी नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55-60 करोड़ लोग

0: बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्म सम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, तभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखिए कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम नीलू जी या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते, उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
2: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
2: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले, नहीं खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई।

0: तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया जो नए 4 लेबर कोड आए हैं कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओ
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रहे हो तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी, जी।
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक BPL जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, उसने उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं,
2: 25 करोड़
0: लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए आप, सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है।
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी,
0: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC फार्मर्स हैं, और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
2: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहाँ मैं भी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहाँ पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था, वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, जैसे इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग, बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है।
1: एक अवेयरनेस क्रिएट हुई।
2: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि

0: जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे डेवलपमेंट जो होते हैं, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहें, जहां हैं जैसे जी रहे हैं रहें, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी अगर वो चाहे, शिक्षा वहां पे पहुंची।
0: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
1: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
0: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहाँ बहुत साक्षरता है, वहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो कहोगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय, जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
1: सर्जना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
2: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
1: जी,
2: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर, जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद, 100 हो गई।
1: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा
2: रामासर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
2: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष का प्रसारण अभी किया जा रहा था।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:35 हुए हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म डेली 6 से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देश और प्रधानमंत्री

0: भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: यह मोर आंतरिक कामना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9,00,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
2: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500

0: वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों समन्वयकों पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: We have been able to achieve that in the first.
5: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
4: They are all designed in India now.
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5

0: बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets. In third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi,

0: tree connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks, and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations, including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana, and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, City Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: Iran's Joint Military Command announced today that the Strait of Hormuz has been closed once again, citing continued Israeli military operations in Lebanon and what it described as U.S. bad faith and a failure to uphold commitments aimed at ending the conflict. In a statement broadcast on state television, the command warned that further measures have been prepared if what it called aggression continues. In cricket, India completed a clean sweep of the three-match one-day international series with a comprehensive 9-wicket win over Afghanistan in the final match at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai today as Yashasvi Jaiswal smashed an unbeaten century, chasing a modest 219-run target. India raced to victory in just 28.4 overs, losing one wicket. Jaiswal slammed an unbeaten 110 off 86 balls while Rohit scored 79 off 69 deliveries. In the FIFA World Cup, the Netherlands will take on Sweden today at 10:30 p.m. IST. The match will be played at NRG Stadium in Houston, United States. The two sides have met 20 times in the past. Their most recent encounter was during the 2018 FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
2: Adab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmin. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت لگاتار امن مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ باہمی بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ قبائلی طبقے بھارت کی ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے اڈیشہ میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیراعظم نے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کی 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی 23rd قسط جاری کی۔ وزیراعظم کل کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ کل نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان سخت نگرانی میں کرایا جائے گا۔ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں تیسرے ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز کے تینوں میچ جیت لیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ انہوں نے اپنی نظریہ ساز حکمرانی اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ تعمیری رابطوں کے ذریعے عالمی منظر نامے پر بھارت کے وقار اور اس کے اثر و رسوخ کو نمایاں انداز سے بڑھایا ہے۔ اڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں رائے رنگپور کے مقام پر جناب مودی کی موجودگی میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت अमन मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है। ओडिशा में मोहन चरण माझी सरकार के दो साल मुकम्मल होने के मौके पर इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया के कई खित्तों में टकराव और गैर यकीनी के हालात हैं, भारत ने सिफारती राबतों और बाहमी मुफाहमत के जरिए तनाज़ियात को हल करने की लगातार वकालत की है। जलसयाम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा की पेशरफ्त को ये कहते हुए सराहा कि रियासत तरक्की के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मशरकी भारत की नशोनुमा में अहम रोल अदा कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मरकज के पूर्व उदय नजरिए का मकसद मशरकी भारत के तेज रफ्तार फरोग के जरिए भारत की तरक्की को रफ्तार देना है।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि कबायली तबके भारत के तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि उन्हें सदर जमहूरिया के आबाई गांव पहाड़पुर में आने का शर्फ हासिल हुआ है। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के हुगली जिले में ताराकेश्वर के मकाम पर पश्चिम बंगा दिवस तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने 18,880 करोड़ रुपए मालियत की पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त भी जारी की, जिससे मुल्क में 9,44,00,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल का यौम तासीस मनाने के लिए मुनक्कदा एक शानदार तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर रियासत के वजीर आला शोभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, मुल्क के नाम वक्फ किया और कुछ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। इन शोबों में रेलवेज, ज़राअत, देही तरक्की, माही परवरी और मवेशी परवरी के शोबे शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बंगाल की तरक्की के लिए सुपरफास्ट रफ्तार से काम शुरू कर दिया है।
3: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
2: योग का बैन अलावामी दिन कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इस साल योग का ये 12वां बैन अलावामी दिन है और इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर के लिए अपनाने की अहमियत उजागर होती है। 2026 के योग के बैन अलावामी दिन की बड़ी तकरीब मगरबी बंगाल में कोलकाता में तारीखी रेड रोड पर होगी, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत करेंगे। रेड रोड पर कौमी सतह की तकरीब कल सुबह सवेरे 5 बजे शुरू होगी। वहां हजारों लोग शिरकत करेंगे, जबकि मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों लोगों के इसमें वर्चुअल वसीले से शामिल होने की उम्मीद है। इस तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तिमाई बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: सकाफत की वजारत मुल्क भर के 100 सरकर्दा मकामात पर योग के खुसूसी तकरीबात का एहतमाम कर रही है, जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे, तारीखी मकामात और योगा की रिवायत को मजबूत करना है। इस पहल के तहत 12 सरकर्दा मकामात पर अहम तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। ثقافتی رابطوں کی بھارتی کونسل کے ساتھ اشتراک میں بیرون ملک 210 سے زیادہ بھارتی

0: आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत ना होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में

हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश। ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे, पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई, जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये ठुमरी

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने

ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे, साल 1955। सन 1956 में राजा नवाथी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी बन गया।

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए।

गाना था ये। और दूसरा गाना था

सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: यहाँ हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल

माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला। जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। क्योंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा।

0: और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

बाद उन्हें कुछ और गाने मिले जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की।

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदीप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: अ गोल्ड मेडलिस्ट एट बोथ द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स एंड ऑनर्ड विद अ डॉक्टरेट इन म्यूजिक, डॉक्टर विवेक असिमिलेटेड अ सबटल न्यूएंसेस ऑफ दिस आर्ट अंडर tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Shrimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates, Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karmahe apni gayan ki shuruaat राग श्री से कर रहे हैं। विलंबित

0: कृष्णा तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है वारी जाऊं रे तुम पे। द्रुतृष्णा तीन ताल में है जिसकी बोल है चलो रे बाई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक कर्महे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektaal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektaal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyam.

0: डॉक्टर विवेक करमही के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले दो दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:53 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।